0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है महमूद रिजवी अकाउंटेंट जी हाँ छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट महमूद रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिजवी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627222, 9627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
12: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
9: 01274201679।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

बस मेरा रंग भी नहीं ते मेरा रूप भी नहीं। जामी वर्गी तो

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुक कीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: क्यों चमन में बेसदा मिसल रिम शबनम है तू लब कुशा हो जा सरूदे बिरब्त आलम है तू

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, टी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio. The world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
6: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
7: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
6: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
6: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
8: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
6: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
9: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
6: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
9: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
6: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
9: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग services.uk
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 Athington Street ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
7: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
7: AsianWeddingsUK.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दें
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स जी हां छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स मैं मूत रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मूत रिजवी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: तुम सा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ادب اور احترام سے معزز سامعین اکرام, معذرت پیش کرتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ. اور صبح بخیر, صبح نو میں تازہ اور فریش ہوا کے جھونکے جو ہیں وہ آپ کی نظر کرتی ہوں تاکہ موڈ بحال رہے. بالکل وہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا, لیکن وہ کیا ہوتا ہے, مقدر کی ہوا میں کچھ ایسی خنکی جسے کہتے ہیں چھائی ہوئی ہوتی ہے. اور کیا کہیں, بس کچھ بھی نہ پوچھیں, کیا بتائیں اور آپ کیا سنیں گے, کہاں تک سناؤں, کہاں تک سنیں گے. اللہ کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی, کیا ایسا ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے, وہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر کو جائیں ادھر روڈ ورک ہو رہا ہے, ادھر کو جائیں ادھر روڈ ورک ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی جو خود سے بہانے بھی گڑنے ہوتے ہیں نا وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, کیا کریں. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ ایسا ہو جاتا ہے لائف میں, اور ان ایکسپیکٹڈلی ہمیں حالات اور سچویشن دونوں کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے. مزید سامعین اکرام, امید کرتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت حشاش بشاش طریقے سے ہمارا کیا بلکہ برافرڈیشن ریڈیو کے پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. جی عائشہ اختر تھوڑا سا دم لے لے, سانس لے لے, کیونکہ سانسیں میری اٹکی ہوئی ہیں اس لیے کہ ان یوزول سی جب سچویشن ہو جاتی ہے تو سچویشن پہ قابو پائیں یا اپنے حواس پہ قابو پائیں, یا پھر اتنی ماشاءاللہ جو ہمارے لسنرز ہیں بڑے عقیدت مند اور بڑے ہی ماشاءاللہ ہمارے انسینٹی سینٹ, جو نیو بھی ہمارے لسنرز شامل ہوئے وہ کہیں گے خود تو عمل نہیں کرتی عائشہ اختر تو یہ کیا ہے بھائی. سوری معذرت, مجھے امید ہے بڑی خندہ پیشانی سے آپ میری معذرت قبول کر لیں گے, مجھے خود بھی بالکل نہیں اچھا لگ رہا. اور اتنا تو میں کبھی لیٹ ہوتی ہی نہیں, لیکن کیا کریں کبھی کبھی ہو جاتا ہے. چلیں کم ٹو دا پوائنٹ, برافرڈیشن ریڈیو 1430 AM پر عائشہ اختر آپ کو انتہائی عقیدت کے ساتھ صبح کا سلام پیش کرتی ہے. جی سلامرز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, گڈ مارننگ, بخیر آگلے. اور ہماری ویب سائٹ برافرڈیشن ریڈیو.co.uk تازہ دم ایک دم سے ہم نے فریش کر دی ہے اپنی ویب سائٹ, اور آپ اتنا خوش ہوں گے ہماری ویب سائٹ دیکھ کے. جی بالکل, ویسے مجھے ایک دفعہ پھر چیک کر لینی چاہیے, تو کروں گی سی یقیناً چیک کروں گی, کیونکہ پھر مجھ سے باز پرس ہوتی ہے کہ آپ واقعی بڑی بڑی مارتی ہیں وہاں پہ. دیکھیں میں بڑی بڑی مارنے کے لیے تو یہاں پہ وہ خود آفر کرتے ہیں, جو بڑی بڑی چھوڑتے ہیں بس وہی ریڈیو کا رخ کریں. تو پھر ہم نے سوچا آج تو ہم نے زمین و آسمان کے کلابے ملا دینے ہیں, ایک کر دینے ہیں, کیونکہ سچویشن جو ہوتی ہے نا کبھی کبھی ایسی گمبھیر نہیں ہم نے بننے دینی, ہم نے تازہ دم فریش رکھنا ہے ایک دم سے آپ کو. اور ہماری کالز جو ہے, ہائے اللہ جی کیا کروں, ہماری لائیو کالز بھی شروع ہوں گی, پہلے اپنے آواز پہ تو قابو پا لوں. اور ہمارا اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677, آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے. ہماری ایک واقعہ یاد آ گیا ابھی کچھ دیر لمحوں میں, بس ہماری بریک بھی ہونے والی ہے, تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز بڑی ہی خوبصورت باتوں سے کرتے ہیں اور پریکٹیکل باتوں سے کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہم پریکٹیکل نہیں بنیں گے تو پھر زندگی کیسے چلے گی, वो तो ऐसे ही दिल परचाने के लिए बड़ी बड़ी मार देते हैं, वरना तो इंसान जब रियलिटी से वास्ता पड़ता है ना, तो फिर पता चलता है कि हकीकत जो है वो क्या है। तो हमारी जब हमें आपको पता है स्कूल और कॉलेजेस में बड़ा प्रिपेयर किया जाता था किसी भी डिबेट के लिए, तकरीर के लिए, एक तो फील बदी होती है कि बस यूं लम्हे से चुपके से उन्होंने एक टॉपिक दिया और उसी वक्त अपना जहन बड़ा शार्प बना के तो तड़ तड़ तड़ तड़ तड़ आँख बोलना होता था, और अरे ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो भी वाकया सुनाऊंगी, कभी कभी बस बुरा हाल हो जाता है। खैर लाइफ है, चलता है सब कुछ। खैर अब बड़े वो हमारी टीचर ने हमें पहले ही समझा दिया कि ये ऐसे भी हो सकता है। कैसे भी वो किसी को डिबेट सिखा रहे थे, अल्लाह भला करे जब मेल होगा या फीमेल होगी, कोई तो कोई हो गई ना। तो अब सारी उसको बड़ी जो डिबेट जो है तैयार कराई गई दिन रात, तो वो उसको बुर हासिल नहीं हो रहा था कि मैं ऑडियंस को कैसे फेस करूंगी। तो वो मासूम सी कोई परी होगी ना, तो ऑडियंस को तो वो टीचर ने कहा कि आप ऐसे करो कि वो जो जो, क्योंकि अब हमने देखना कि बड़े बड़े जो आपने सर जो होते हैं ना, वो आपको सर ही नजर आते हैं जब आप स्टेज पे खड़ी होती है ना, और फिर सारे सर नजर आते हैं, फिर कुछ नहीं भी पता होता है कि हमने विन करना है, हमारा कंपटीशन बड़ा टफ है। तो वो क्या हुआ, तो उस मासूम को कहा गया कि तुम जो गोभी के जो फूल होते हैं ना, बड़े बड़े होते, तो तुमने यू इमेजिन करना है कि ये ना इंसानों के सर हैं, बस खोपड़ियां हैं, बस तुमने यही वरना तो अच्छा बाकी छोड़ो तुम, क्योंकि जब ऑनेस्टली जब हम भी स्टेज पे जाते हैं तो सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे होते हैं, और इतना हमारे ऊपर उस वक्त वो जोश, वो खरोश, वो हमारी आप सब अंदाजा करें वो बाली सी उम्र, और ऊपर से इतना कंधों के ऊपर बोझ। खैर और ऑडियंस को खुश करना कोई आसान बात नहीं होती, और इतने टफ कॉम्पिटिशन हो मकाब के मध्य मुकाबल, इतना हरीफ जो है वो बड़ा ताजा दमसा हो हर लिहाज से, तो उसको विन करना वो कहते कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। खैर फिर क्या था, उस मासूम ने ना वो बड़े बड़े गोभी के सर ना गोभी के फूल, उनको समझ लिया कि ये इंसानों के सर हैं बस। तो यूं देते रहे कि वो दिन रात लगी हुई है प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप ये कहेंगे मैं नहीं हूं वैसे, आप कहेंगे मैं नहीं हूं, ये मैं आपको वाकया सुना रही हूँ। तो वो जी बस इमेजिन कर लिया, ये बस बड़े बड़े सर हैं, तो एक किस्म का वो यूज टू भी हो गई कि बस यही कुछ होता है। अब प्रैक्टिकली जब ऊपर स्टेज पे हाई मोहतरमा ने जब इतने रियल सर देखे, ये मैं देखे बड़ी मानी खेज बातें हैं ये, और हकीकत की जिंदगी से इसका क्या ताल्लुक है। अरे ये बातें हमारी बड़े अर्क निचोड़ी हुई होती हैं, आप भी क्या याद रखेंगे, ऐसे ही नहीं आके बैठ जाते, हम टाइम नहीं किसी का वेस्ट करते होते। हमारा मकसद होता है हम पते की बात करें, और पते की ये होती है रियलिटी, जब रियलिटी को फेस करना पड़ता है ना, फिर वो सारे इमेजिनरी वर्ल्ड जो है ना वो निकल जाती है। तो वो क्या, अब जब इंसानों के सर देखे हैं तो वो मासूम कहती है गोभी गोभी होती है और बंदे बंदे होते हैं। तो क्या ख्याल है आपका भी वज़ सावरी ने कराव, फिक्शन जस्ट ड्रीमलैंड एंड वॉट एवर कैन आई से, आई कैन से वॉट एवर, बड़ी एक रोमानवी सी दुनिया होती है तखय्युलाती इमेजिनरी वर्ल्ड, उससे जब रियलिटी में आए ना तो फिर पता चलता है हम वाकई ब्रॉडफेडरेशन रेडियो 1430 AM के आगे बैठे हुए। बड़ा कुछ लगता है जी, बहुत कुछ, अभी तो देखे शुरुआत है, मुकाबला हमारा भी बड़ा टफ होने लगा है। आपको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हमारे राज जो है वो खुलते नजर आएंगे। ओ आयशा अख्तर जी, वो कहते हैं ना कि जब इंसान आ ही जाता है मैदान में तो फिर मैदान मारना ही पड़ता है। खैर बातें भी आपसे बहुत खूब रहेंगी, दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। आपका प्रोग्राम आज आपके लिए इतना जबरदस्त, आप यकीन करें कि एक पैकेज है। और जब लाइव कॉल्स भी होंगी, अभी थोड़ा सा आपको पता है हमेशा की तरह थोड़ा सा तो सस्पेंस आयशा अख्तर रखती है, और ये सस्पेंस जो है जब खुलेगा ये आपके पास एक सरप्राइज आने वाला है, तो वो आप कहेंगे कि आज का दिन जो है आपके लिए वंडरफुल दिन है। जी बिल्कुल, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इधर उधर की नहीं हांक रही हूँ, बहुत ये पते की बातें हैं, और इंशाल्लाह आपके लिए ज़बरदस्त सा एक ऐसा सरप्राइज छुपा है कि आज बड़े बड़े जो है ना, जिसे कहते हैं ना फनकार, वो सामने आने वाले हैं, अपने फ़न का मुजाहिरा करने वाले हैं, और हम देखेंगे कि कौन कौन अपने फ़न का, चले आप अगर कहेंगे तो मैं भी मैदान में, लेकिन मैं वो प्राइज नहीं, बड़े बड़े प्राइजेज हमने रख दिए हैं जी आज के प्रोग्राम में। आप क्या याद रखेंगे कि ये हम आपका प्रेशियस और वेरी एक्सपेंसिव टाइम हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर, हम टाइम वेस्टर बिल्कुल भी नहीं है जी, हम तो टाइम को बड़े अच्छे अंदाज में जी इस्तेमाल करने वाले हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए राज खुलेंगे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे राज के आप कहेंगे अश अश कर उठेंगे कि वाकई हमारा प्रेफरेशन रेडियो 1430 AM जो है आजकल उरूज की तरक्कियों पर इंशाल्लाह ताला जा रहा है, और आप भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। सिर्फ ये नहीं कि प्रेजेंटर्स इधर बैठे हुए हैं और हम हमारी काविशें हैं, दिन रात की कोशिशें हैं जी, रेडियो टीम जो है बड़ी अंथक कोशिशों में मेहनतों में लगी हुई है, हमने ये मेहनत ज़ाया नहीं होने देनी, और हम सब ने आपको साथ लेके चलना है कि आपके लिए प्रोग्राम्स होते हैं, आप हमारे जो हैं प्रोग्राम का एक खसूसी हिस्सा है, और ऑब्वियसली आप सबके लिए प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं। अगर आप को हम साथ नहीं रखेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो बात बनती नहीं है, बात तो बड़े अच्छे सलीके से बनानी है, अच्छे अंदाज से आप खुश हो जाएंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप कहेंगे वाह व्हाट अ सरप्राइज, थोड़ा सा धीरज रखें और ब्रेक के बाद आपके ऊपर बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज सामने आने वाला है जी बिल्कुल। हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677, जाना कहीं नहीं है, फिर नहीं कहिएगा कि आयशा अख्तर का इतना मैंने मेहनत से लगन से आप लोगों के लिए वो गिफ्ट तैयार किया है, और वो जो गिफ्ट पैकेज होगा हमारा वो एक ऐसे फनकार को मिलने वाला है। थोड़ा थोड़ा मैं क्लू दिए जा रही हूँ, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है, सरप्राइज बाकी है, और आप भी उस सरप्राइज का हिस्सा बनने वाले हैं। आपके लिए आज का प्रोग्राम आयशा अख्तर ने स्पेशली जो है आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए तैयार किया है, ताकि आप अगर हमारे गुड लिसनर्स हैं तो हम भी आपके लिए बहुत गुड प्रेजेंटर हैं जी। हमारा आपकी होस्ट, आपकी मेज़बान जो है आयशा अख्तर, कैसे आप लोगों को पीछे रख सकती है। आप आगे आएंगे और देखिएगा महफिल जमाते हैं, बातों में नहीं ख्याली बातों से निकल आते हैं, प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकली आपके लिए मनोरंजन जिसे कहते हैं तफरीह तबा का एक ऐसा अछूता अनमोल प्रोग्राम होगा कि आप सब इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने बनाना है इसे। हमेशा जो बात हमारे ऊपर आ जाती ना आयशा अख्तर के ऊपर, नहीं जी अब आपने हमें बताना है कि आप कितने पानी में हैं और आप कितने बड़े फनकार हैं। ठीक है, अभी ब्रेक के बाद आपके ऊपर डिस्क्लोज करती हूँ अपना सरप्राइज, और ऑनेस्टली स्पीकिंग यू विल एंजॉय दैट सरप्राइज एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, जो कि मेरा मकसद होता है प्रोग्राम का। और बाकायदा ये आपके साथ मैं शेयर करूँगी कौन सा टैलेंट जो भी है आपके सामने आए, हमसा हो तो सामने आए भाई, कोई हमसा हो तो सामने आना चाहिए, क्योंकि आप ब्रैडफोर्डेशन रेडियो 1430 AM से रिलेटेड हैं। जी हाँ,
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1430 AM, DAB+, मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
2: एंड the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
11: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
11: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
11: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
12: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

जी मौजूद सामईन इकराम, ब्राफर्ड एशियन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर के संग सुबह 9 में एक खूबसूरत सा प्रोग्राम जो है आप समाप्त फरमा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम जो है आपको बेहतरीन प्रोग्राम लगेगा और आप हमारी आज की जो ये खसूसी ऑफर जिसे कहते हैं उससे भी लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे होंगे। और हमारे हमने जो आपको इस वक्त स्टेज पर कह लें या अपने माइक के लिए आपको मदऊ किया है, तो यकीनन आप हमारी ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और हमसे राबिता कायम करें। हमारी वेबसाइट brafordasianradio.co.uk और आपका जाना पहचाना नाम, हमारा स्टूडियो का 01274306677 जी, इससे भी आप इस्तेमाल करें और हमें बताएं कि हमारी ऑफ़र आपको कैसी लगी और आज का जो प्रोग्राम है उसमें आप कैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स बनेंगे और किस तरह से आप अपने फ़न का जो है मुजाहरा भी करेंगे। एक मैं आपको बात बता दूं कि यकीन करें कि जो इसका हमने सरप्राइज मैंने एक गिफ्ट रखा है आप लोगों के लिए, आप वाकई जब वो गिफ्ट देखेंगे और सुनेंगे तो आप उसे न सिर्फ जिसे कहते हैं कि खुश होंगे बल्कि आप अगेन एंड अगेन दोबारा दोबारा से ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो है वो हमसे चाहेंगे कि हम इस तरह के मजीद कॉम्पिटिशन्स जो है आपके लिए लेके आए और आपका फन जो है वो निखर कर और उभर कर हमारे सामने आए। तो देर किस बात की है, अभी कॉल मिलाएं और हमारे साथ प्रोग्राम में आप शरीक हो जाएं। जब तक आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपकी नज़र एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है वो पेश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा।

0: سامعین اکرام، برفریشن ریڈیو 14:13 AM پر صبح 9 کا خوبصورت سا پروگرام آپ کے زیر سماعت ہے. ہماری ویب سائٹ برادفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے جی. ابھی ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور آفٹر دا بریک آپ کے لیے مزید آج کے خوبصورت، ہر دن اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت دن ہوتا ہے جو ہمیں ہماری زندگی میں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور خوبصورت سا دن عنایت کیا ہے تاکہ ہم زندگی جو ہے اتنی پریشس، اتنی خوبصورت زندگی ہے، اس کو مزید رانائیاں ہم نے کیسے دینی ہے، کیسے ہم نے اپنی زندگیوں کا جو لائحہ عمل ہے اس نہج پہ ترتیب دینا ہے کہ غموں سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غموں سے دور رکھے، آمین. اور ہماری ہر صبح جو ہے وہ عید کی طرح ہو. مزید سامعین اکرام، آپ کے ساتھ آج کی جو ہماری پوری ترتیب ہے پروگرام کی، آپ اس بریک کے بعد ایک اور خوبصورت سی ترتیب سے لطف اندوز ہوں گے جو کہ ہمارے پروگرام کا خاصہ ہوتا ہے. ہمیشہ سے آپ کی وہ جو اب ترجیح ہوتی ہے اس کو اولین فوقیت دی جاتی ہے. ملتے ہیں آفٹر دا بریک.
1: ریڈیو آن 14:13 AM، DAB+، موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk. دس is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
8: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
7: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD71JL.
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644.
9: فور کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
10: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
10: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے.
8: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
10: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street، بریڈفورڈ، BD8 ATY.
8: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .uk. دلہن وہ جو پیا من تھائے،
10: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
8: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ، چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
10: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار
8: جو دلہن کرے سنگھار،
10: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
8: خالص سونے کی پہچان،
10: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
8: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
10: آپ کی شان
8: ہماری آن،
10: کوالٹی کی پہچان.
8: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane، بریڈفورڈ، BD95VR، 01274-491-442.
10: پاکستان جیولرز. نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
8: ارے سیف پہ رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
10: بس، ٹرک، فورک لفٹ، ٹیکسی لائسنس، ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
8: 30 سالہ بریڈفورڈ کا سب سے بڑا، پرانا اور قابل اعتماد نام، سیف پہ رائڈر.
10: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹر، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
8: 33 Wetley Lane، بریڈفورڈ، 01274201679.
10: سیف پہ رائڈر .co.uk.
4: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
11: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
13: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627222, 9627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: जी बिल्कुल, समय इकराम, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो है, 14:13 AM, आपका ये खूबसूरत सा चैनल। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें हमारा ऐप, और जहाँ कहीं भी हैं, दिन भर की मसरूफियात के साथ साथ आप हमारे प्रोग्राम्स से लुत्फ अंदोज हों। धीरे धीरे हमारी बढ़ती हुई इंशाल्लाह शोहरत जो है ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की, आपकी जो क्या कहते हैं खूबसूरत आरा, फीडबैक जो है वो हमें और ज्यादा प्रोग्राम्स को निखारने में मदद देती है। आप जरूर हमें खूबसूरत सी अपनी फीडबैक जो है वो दिया करें और हमारे प्रोग्राम्स से लुत्फंदोज हुआ करें। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। हमने आप के लिए जो है एक राह जिसे कहते हैं उस्तवार कर दी है, हमवार कर दी। अब आप की ये जो है चॉइस है, आपकी अपनी मेंटालिटी के आप कैसे हमारी जो इस ऑफर से भरपूर तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको पता नहीं है कि आपके लिए जो है एक खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर जो है हमने तैयार किया है, एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज गिफ्ट जिसे कहते हैं वो आपके लिए छुपा के रखा है। और अभी जो बेहतरीन अनाउंसमेंट हमारी होगी इंशाल्लाह फ्राइडे के प्रोग्राम में, आपके लिए एक ऐसा जो है गिफ्ट लेकर आने वाली है आयशा अख्तर, के आप जरा दिल थाम के रखिएगा और जरूर वो प्रोग्राम हमारा फ्राइडे का भी सुनिएगा। और ये जो प्रोग्राम है, अभी अगर आपको मैं ये कहूँ कि ठीक है जी, हम आपको मोटर बाइक जो है वो यहाँ पे यूके की रोड्स के ऊपर तो ठंड बड़ी लगेगी, इसलिए मैंने मोटरसाइकिल के बारे में से दिमाग में से निकाल दिया। साइकिल, अरे वो भी इतनी तो ठंड है, क्या आप चलाएंगे। मैंने आपके लिए जो गिफ्ट ऑर्गेनाइज एक तरतीब दिया है ना गिफ्ट, आप कहेंगे कि वाओ यूके में ये ही चल सकता है, क्योंकि यहां पे हमें मौसमों को बड़ा मद्देनजर रखना पड़ता है। मौसम जो है ना, ओह आप क्या कहते हैं, मुझसे ज्यादा आपको पता है मौसमों के मुताबिक, मौसम के मुताबिक आपके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट। अरे अब यहां पे मैं बड़ी बड़ी नहीं मार रही, मैं वाकई आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट तैयार किया है भाई, कैसे बताएं, कैसे समझाएं। और बिस्मिल्लाह करें, इब्तिदा करें, कॉल्स खुली है भाई, आप बारिश का पहला कतरा कौन बनेगा भाई। मैं तो हैंड्स अप में मैं नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप कहेंगे मुझे कॉल्स आएंगी तो फिर आयशा अख्तर बारिश का पहला कतरा बन सकती है, ताकि आप झिझक और शायनेस महसूस ना करें। जी बातों को आगे बढ़ाते हुए, इससे पहले हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। अरे अरे भाई मैं वाकई सीरियस, आई एम वेरी सीरियस नाउ. आप क्या कहते हैं कि आयशा अख्तर सीरियस नहीं है? भाई ये कैसे हो सकता है, मैं सीरियसली यहाँ पे आपको यही कह रही हूँ कि हमारा गिफ्ट बहुत बेहतरीन है. हमें कॉल्स करें, हमें बताएं, हम आपकी जो है आरा जो है उसको देखेंगे. और अगर आप मुझसे फरमाइश देखें, फरमाइश के बगैर मैं यूं ही शुरू हो जाऊँ और इतनी अपनी कीमती आवाज़ और कीमती लम्हात और अपनी एनर्जी छोटी सी मासूम सी अरे देखिए मैं खुद ही जोक कर लेती हूँ है ऐसा, और ऐसा अपने आप को ना कहूँ तो अभी मैं तो तौबा तौबा किधर चली जाऊँ. मैं कहती हूँ ओ हेलो, थोड़ा हाथ खींच के खाओ, क्या कर रही हो. खुद ही अपने आप को बड़ा मैं ट्रेंड करती हूँ, जो समझाती हूँ नहीं भाई बस करो अब मजीद. फिर खाने को तो बहुत कुछ, यहाँ पे इतनी वैरायटी है यार, फूड सामने हो तो किसका दिल करता है कि हाथ, और स्पेशली अरे बस फिर मैं ज्यादा बातें कर गई तो फिर वही हर वक्त मौलवी साहब बाहर कहेंगे आप हमारे हलवे के पीछे क्यों पड़ गई हैं. और फिर हमारे जो खाने हमें माशाल्लाह मुयस्सर होते हैं, इतने वो घी वाले और स्पाइसी क्या कहें, फिर जब हम महफिल में होते तो फिर खाया जाता. ये बातें मत छेड़े, बहुत आगे बात बढ़ जाएगी भाई. दुनिया में जीना है हमने तो जीने दे. तो बंसाहिर ग्राम आज का मेरा फोकस्ड पॉइंट जो है आपको आपकी फनकारी के साथ आगे लेके आना है, ताकि आप मेरी बातें फिर आपको मैं भी समटाइम अच्छी लगती है, समटाइम आप बोरिंग ना फील करते. तो मैं तो हर हद तक, हालांकि मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है मैं कभी भी आपको बोर ना होने दूं. और फिर चले आप अगर समझते हैं कि बीजी आप बहुत बड़े फनकार हैं तो फिर हमसा हो तो सामने आए ना भाई कोई, तो फिर मैं अपने लिए नहीं कहती, आप अपने लिए कहेंगे. आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे नहीं भाई, नहीं मैं तो मैं इतना प्राउडनेस अच्छी नहीं होती है भाई, मैं तो कभी नहीं कहती हूँ. लेकिन मैं हमेशा आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखती हूँ कि आपके अंदर बड़ा टैलेंट है, आप को के अंदर जो गुणकारियां हैं, जो गुलकारी नहीं कह रही, गुणकारियां कह रही हूं, जो टैलेंट और स्किल्स हैं आपके, निखर कर उभर कर. हमेशा बात होती है, आप कहेंगे नसीहत ही करती रहती हूं मैं, नहीं आज कुछ नहीं करूंगी. आज मैंने कहा है कि आप लोग कोई खूबसूरत सी बात सुना दें, कोई आप खूबसूरत सा वाक्या. देखें मेरे से ज्यादा भी कोई बोल्ड और बहादुर हो सकती, खुद ही अपनी हमाकते भी मैं बयान करती रहती हूँ. मैं कितनी बड़ी हमाकते समटाइम्स कर जाती हूँ, लेकिन आपके साथ शेयर करती हूँ ना, और धड़ल्ले से बिला झिझक क्या हो गया भाई. और अभी देखें मैं अपने आप को कोसती हूँ, मैं अपने आप को रोकती हूँ, खुदा के लिए वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन करोगी मत खाओ इतना. फिर मैं कहती हूँ अच्छा मैं क्या करूँ, लेकिन आज तो वैसे मैंने च्युइंगम भी नहीं मुंह में रखी है मोस्टली. मैं अब यही सोचा है कि इसी का सहारा लूँ तो एटलीस्ट कंट्रोल्ड रहूँ. ये वैसे एक बात तो है, आप सब इससे इत्तेफाक करते हैं कि वेट गेन करना बड़ा आसान है, लूज करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है. मैं फिर कहती हूँ भाई आयशा अख्तर खाने पीने वाली डाइट करती है, डाइटिंग करती है. तो कहते हैं डाइटिंग पे हो जी, मैं खाने पीने वाली डाइटिंग करती हूँ. देखें जी आप ही सुनाए ना, आप अपने बारे में खुल के आए सामने बताएं. हम आप देखें, मैंने तो आपके लिए इतना जबरदस्त जो है वो क्या कहते हैं एक गिफ्ट पैक जो है वो तैयार करके रखा है. हम आपको खाली हाथों नहीं यहां से जाने देंगे, ये कैसे हो सकता है. आयशा अख्तर के लिए आपकी फीडबैक बहुत बड़ा गिफ्ट होती है. और अभी मुझे रिसेंटली कल ही का वाकया है. देखिए आप कहेंगे मैं झूठ नहीं बोलती हूँ ना, है ये मेरा डोर भी मैंने सही तरह से लॉक नहीं किया था. एनीवे तो डोर खुल गया है, एनीवे कोई बात नहीं है. तो देखिए मैं जो बात करती हूँ वो सच्चाई पर मैं अपनी बात करती हूँ.

चलिए अच्छा, आपको मोटिवेट करने के लिए ना मैं एक प्यारी सी बात सुनाती हूँ कल की। अच्छा, और अभी की सुना दूं तो अभी तो आप हंस हंस के दोहरे तेहरे हो जाएंगे। डोर के आगे वो रखा हुआ था ब्लॉकर जो उसका होता है, उसको पीछे नहीं किया और डोर बंद किया तो अशक्त डर गई, हाय डोर कैसे खुल गया। भाई बड़ी एहतियात जरूरी है, छोड़ें ये सारा कुछ जिंदगी में लगा रहता है। खैर, कल मैं वो ये अपने फोटोकॉपीज कुछ करवानी थी, सीवी वगैरह की, ये दिस एंड दैट, जो चलो हम प्रिंट आउट के लिए निकले तो वो जो है प्रिंट करने वाला लड़का जो है वो कहता है कि अच्छा करता रहा, उसको पता है कि मैं कार्ड्स वगैरह अपने वहीं से छुपवाती हूँ बनाती हूँ, तो कहता है कि अरे वो अरे आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने कहा मेरे लिए क्या गुड न्यूज़ तुम्हारे पास होगी? कहता है कि वो ना मेरे चाचू ने कल लगाया हुआ था रेडियो तो आपकी आवाज़, तो कहता है मैंने कहा कि अरे ये तो मेरी कस्टमर मेरे पास आती हैं, ये तो उनकी आवाज़ है, तो कहता हाँ ना मैं बहुत बड़ा इनका फैन हूँ। अच्छा ये ऐसा बात होती तो मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि हो सकता है कि देखिए उस वक्त आप जो टैलेंट अपना शो करने से घबरा रहे हैं, हेजिटेशन नहीं फील करें, कहीं ना कहीं कोई आपकी आवाज से महसूस हो रहा होता है, आपकी आवाज तरियाक का काम दे रही होती है और आपकी आवाज जो है वो मुझे, फिर वो लड़का ही बताने लगा कि हमारे कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं तो पता नहीं, उसने बताया कि कोई किसी की आवाज़ ऐसे ही बड़ी अच्छी लगी तो वो काफ़ी हद तक ना उसका जो है वो अपनी तकलीफ से निकल के तो उधर थोड़ी उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो गई। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, तो इसलिए फिर क्यों ना जो मेरे इतने मोहतरम कॉलर्स भी हैं, मेरे इतने मोहतरम लिसनर्स हैं, वो इतना सराहते भी हैं, कहीं ना कहीं वास्ता पड़ जाता है, ओ अच्छा आपकी आवाज़ भाई जानी पहचानी, अरे हाँ वो फलां वक्त पे आपने एक बात बड़ी अच्छी कही थी। आप भी आए, अच्छी सी बातें स्प्रेड करें, शेयर करें हमारे साथ, आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपने फन का, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी जितनी भी खूबसूरत आवाज़ होगी वो क्या पता कि कोई बीमार सुने तो उसको शिफा हो जाए, क्या ख्याल है? कोई भूला भटका रास्ता भटक गया हो तो उसको रास्ता मिल जाए। अरे अरे आप ये ना समझा करें कि मैं बड़ी बड़ी मार रही, ये ऐसा हो जाता है, होता है, जिंदगी इसी का नाम है और ये जिंदगी जो है इसमें रंग बखेरना भरना जो है ना हमारे इख्तियार में होता है कि हम, और सबसे बड़े जो होते हैं हमारे हथियार हमारे पास जैसे कहते हैं अल्फाज होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं ना, ये किसी को जिंदगी जीने का भी दे देते हैं शऊर, और बाज़ औक़ात इसीलिए तो कहते हैं कि हर्ट हो जाती हैं फीलिंग्स जब कोई कहता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किसी के साथ बात हो जाए। खैर हमेशा कोशिश रखनी है कि सबको खुश ही रखा जाए, जब मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी तो बस वही बात होती है, मेजॉरिटी खुश हो गई, कमोबेश कुछ ऐसी होती हैं पर्सनालिटीज़ के भाई उनको हमारे से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन भाई उनकी अपनी ये कहते मेंटालिटी और उनका अपना ये एक टैलेंट जिसे है वो है उनके पास, ऐसा तो भी करें, हमें तो जो है अच्छी बातें जो है फैलानी है सोसाइटी में, आपने आगे आना है, आपको एक नादर मौका जिसे कहते हैं फ्राहम किया जा रहा है और हम आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाएंगे। एनीवे आप इस बारे में ज़रूर सोचें। उतनी देर तक एक बहुत ही खूबसूरत, आज मैंने कहा कि बातें जो है ना वो खूबसूरत करनी है इंशाल्लाह, और आपको भी आपके टैलेंट को, और पूरी कोशिश है कि आपको खूबसूरत से म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ करवाया जा सके, बहुत ही खूबसूरत सा। मैं बात बताने लगी थी लेकिन ये फिर लंबी हो जाएगी, आप कहेंगे कि या आयशा अख्तर जो है ना वो शुरू हो जाती है और फिर इसकी बातें ही नहीं खत्म होती हैं भाई, तो फिर मैंने सोचा कि चले आप भी थोड़ा सा तवक्कुफ जिसे कहते हैं वो कर ले, और मैं तो कोई बात नहीं, आप कहेंगे तो मैं सुना देती हूँ, आप चाहते हैं कि आप इस वक्त आपका गाना सुनने में मूड है तो मैं एक बड़ा ही
आशिकी से भरपूर जो है वो आशिकी का ही फिल्म का जो है वो सॉन्ग आपको सुना देती हूँ, तो आपका मूड भी बहाल रहेगा, फिर आप सोचिएगा भी, फिर जंप इन करें। और अगर आपने बारिश का पहला कतरा मुझे बनाना है तो जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो फिर आशा अख्तर तो आएगी नहीं। हो सकता है मैंने आपके लिए कितनी खूबसूरत सिलेक्शन करके रखी हो, कितना खूबसूरत सा मैं गुनगुनाऊँ, कितना मैं खूबसूरत सा आपको महसूस करूँ एक प्यारे से गीत के साथ। अरे ये तो फिर जब आप फरमाइश करेंगे तो तभी होगा, अभी तो फिर कुछ नहीं, अभी तो आपको हम आगे लेके आ रहे हैं। क्या ख्याल है, सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, फिर उसके बाद बातें होती हैं। ठीक है,

0: bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

का। उसके साथ ही फिर मैंने उस बनाने वाले की बड़ी तारीफ की कि जिसने इन खूबसूरत कलर्स का कॉम्बिनेशन यूं तरतीब दिया, अब हम रेड के साथ ही पिंक फिर लगा देते हैं। देखिए, ये अपनी अपनी सोच है, मैं नहीं कहती ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उस बुके को एनहांस करने, उसकी ब्यूटी एनहांस करने के लिए कि उसको चार चांद लग जाएं, उसकी ब्यूटी को बल्कि चांद चांद लग जाएं, तो ये भी सलाहियत और टैलेंट देखें अल्लाह ताला ने, ये भी अल्लाह ताला की एक देन है कि उस इंसान को दिमाग ऐसा दे दिया कि जिसने इन रंगों का इंतखाब यूं सलीके करीने तरीके से किया कि हर रंग जो है वो उभर के सामने आ गया। मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तख्लीक, जो दिमाग है अल्लाह ताला ने इंसान को दिया, अक्ल सलीम जो इंसान के पास है, इसको इस्तेमाल। अब वो जो है, ये सारे फ्लावर्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, इनके साथ जो टच दिया गया, एक ग्रास कह लें, एक पेटल्स कह लें, जो कि लीव्स कह लें, ऐसे ग्रीन कलर के हैं, उनकी अहमियत उस वक्त उस परोने वाले ने, बनाने वाले ने दो गुना से क्या, हजार गुना ज्यादा कर दी कि जब उसका टच उन खूबसूरत फूलों के साथ दिया गया। तो वो ये होता है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अबिलिटीज रखी हैं, हर एक का टैलेंट डिफरेंट है, हर एक की खूबसूरती, लेकिन बनाने वाले ने हर एक को दिया है। हर एक फूल की अपनी खुशबू है, हर एक फूल की अपनी खूबसूरती है, हर एक कलर जो है अट्रैक्टिव है, और ग्रास जो है वो समझ ले कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, लेकिन बनाने वाले ने, परोने वाले ने उसको उस जगह पे सजा दिया कि वो भी बेकार रायगा नहीं गई। और जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनका टच ऐसे दिया गया कि वो, उसने बता दिया कि मुझे जो अकल सलीम अल्लाह ताला ने दी है, मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूं या कर रहा हूं। ये बातें होती हैं जो प्रैक्टिकल, मैं हमेशा, आपको पता है कि प्रैक्टिकल वे पे बात करना पसंद करती हूं, क्योंकि मैं इमेजिनरी वर्ल्ड में तखय्युलाती वो उस वक्त थी, परियों के देश में, जब हम माशाल्लाह वो स्कूल कॉलेज यूनी की, तो खैर यूनी तो घर में ही हमें सारी करवाई गई, लेकिन ये है कि कॉलेज तक, हद तक, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फर्दर जो भी एजुकेशन है अल्लाह ताला ने रखी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो फिर घर को अगर हम यूनी बना लें तो यूनिवर्सिटी, तो वो बहुत अपनी अपनी सोच होती है। अब मैं ये देखें कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, जो जो हम जिंदगी की सीढ़ियां जो है, वो ऐसे ही तो नहीं कहते ओल्ड इज गोल्ड, और मैच्योरिटी इंसान के अंदर आती जाती है ना, तो वो अब जो, फिर वो कुछ लोग कह देते थे नहीं जी आपको बहुत एज कंसर्न है कि अल्लाह के पास, बेशक अल्लाह ताला के साथ वो तो किसी भी एज में हो सकता है, किसी ने कोई गारंटी तो दी नहीं है अपनी लाइफ की, दी है तो बता दे। तो फिर ये हम पर्टिकुलरली क्यों कहते हैं कि नहीं जी ये एज जो है बस ये जा रही है, और दूसरों को मायूस करना कि तुम बस जी तुम्हारी एज ज्यादा हो गई, ये इतना, मैं कहती हूं कि इंसानियत से गिरा हुआ एक जुमला है, सेंटेंस है, आप किसी की भी पर्सनालिटी को डिग्रेड करने के हकदार है ही नहीं। हर इंसान, और जिसको आप उसकी ब्यूटी को, उसको एनहांस कर रहे हैं, उसने भी इस दौर से, हर एक इंसान ने, अल्लाह ताला ने ये सिलसिला कर दिया, इस सफर से गुजरना वक्त दूर नहीं है, जब हर कोई इस सफर से गुजरने वाला है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि यूं यूं इंसान जो है ना, यूं यूं अपनी एज की सीढ़ियां ऊपर जाता, तो उसको पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए कुछ रखा है। सरप्राइजेज, दीज आर द सरप्राइजेज ऑफ अवर लाइफ, इन आवर लाइफ एक्चुअली, कि हमने इनसे लुत्फ अंदोज कैसे होना है। प्रैक्टिकल लाइफ को मोर एंड मोर हम अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि रब्बे करीम, रब्बे अजीम, हमें किसी का मोहताज ना कर। अल्लाह ताला ने हर इंसान को, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में है, जीरो से लेके एंड तक, हर इंसान को अल्लाह ताला ने यह हक दिया है कि वो अपनी भरपूर जिंदगी गुजारे। बताएं कि अगर आयशा अख्तर कोई रॉन्ग बात कह रही है तो अभी मुझे कॉल कर दे।
अभी

कॉल करके बता दे। हर इंसान को हक है कि वो भरपूर और जो लिमिटेशंस और बाउंड्रीज है वो सबको पता है और उनका ख्याल रखना है। कैसे रखना है सबकी अपनी स्वाबदीद है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? और प्रैक्टिकल लाइफ में किसी की फीलिंग्स हर्ट ना करें। आप हर इंसान का तरक्की उरूज पर जाएं। उरूज पर जाने के लिए कि आप जो आपसे पहले से रिलेटेड है उनको धक्का दे के मार देंगे, फना कर देंगे, और नए जो वो कहते हैं नया चार दिन और पुराना क्या है, नया नौ दिन और पुराना सौ दिन, उसको भी आप भूल जाएंगे। ये प्रैक्टिकली ये क्या है दुनिया में? फिर आप फिर लोग कह देते ओए आजकल बड़ा अफरा तफरी, कौन फैला रहा है अफरा तफरी? मैं हमेशा इस बात पे फोकस्ड होती हूं कि आप कह देते हैं मेरे साथ बहुत जी हसद कर रही है कोई। आप नहीं किसी के साथ कर रहे, आपका क्या रद्द अमल है? आपको कैसे पता कोई आपके साथ, वो फला मेरी दुश्मन है, वो फला मेरा दुश्मन है, वो फला मुझसे हसद करता है? क्यों आप नफरतें फैला रहे हैं दुनिया में? आप अकेली जात के साथ ये, और सबको आप कितने हजारों सुनने वाले हैं, कितने इरिटेट होते होंगे इस सेंटेंस से। सोचना है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल लाइफ। आजकल तो जी फिर वो एक टॉपिक चल रहा था जी, वो पुराना दौर जो था ना वो बड़ा वो जी कदरें जो थी हमारी, आज की जो अकदार हैं उनका अच्छा पहलू जो है वो किधर है, अच्छाइयां किधर हैं? बुराइयों को ही क्यों चलें? बुराइयों को इस हद तक किया जा सकता है आगे कि इनको खत्म, लेकिन क्या इनका खात्मा होता है? दूसरों पे, दूसरों के कंधों पे डाल दें कि जी आपने बुराइयों का खात्मा करना है, हम तो नहाए दूध के नहाए हुए हैं। क्या ऐसा है कि नहीं है आप बताएं? अशक्त तो खुद को पहले कटहरे में हमेशा रखती है, फिर बात होती है और फिर हत्तल वसा कोशिश की जाती है कि भाई आप कोई नेगेटिविटी आपके साथ कर रहा है, बखेर नेगेटिव पावर्स हैं उनसे दूर हट जाए। किसने कहा है? और आप अपना काम करते जाएं। अच्छा कोई कर रहा है तो एक दिन आएगा कि वो खुद ही शर्मिंदा होगे, छोड़ देगा, भाई इसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसने अपना काम करना है। मैंने पहले भी बताया था, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हासदियों का काम हसद बुरा, क्यों इसको, इसकी जो है मैं एक अलहदा से आप यकीन करें कि बनाऊ ना टॉपिक, हसद जेलसी क्या है, किसी को देना किसी से जेलस होना, इसकी रेज ना सिर्फ उसको जेलस करने जिसके आप हो रहे हैं उसको नुकसान, बल्कि आपकी जात को खा रहा है जिससे आप जेलसी फील कर रहे हैं। हसद यूं खा जाता है आपके अंदर को जैसे वो दीमक स्लोली स्लोली लकड़ी को बर्बाद कर देती। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम बस अफरा तफरी और खींचातानी, हकूक जबत, वो जी आजकल ये हो रहा है, कौन कर रहा है? इस्लाही पहलू उसका अल्टरनेटिव क्या है वो हम दें। ये अल्टरनेटिव है जी, अगर हम पॉजिटिविटी पे रहें। हाँ जी ये बहुत अच्छी बातें हैं, इसको करें। और जो नेगेटिविटी है वो चल रही है, सबको पता है, उसको खत्म करने की कोशिश है। भाई फिर वो तुम कौन होती हो ये खत्म करे, हमें पता है, हम कैसे भी तो रहे हैं ना, हमने कभी किसी को मना किया है कि भाई, लेकिन ये तो ओवरऑल बात हो रही है। और हर किसी को पता होता है कि मैं कैसा हूं, मैं कितने पानी में, मैं क्या हूं, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। अगर हम सब जो हैं वो मिल मला के अच्छे गुफ्तगू में रहें, अच्छे ताल्लुकात में रहें, और सिर्फ ये किताबी बातें नहीं, या फिर बस बैठ के जी आपने जी आजकल तो बड़ा ही, आजकल तो ऐसा आ गया दौर, हम भी इसी दौर के हैं, हमने ये भी देखना है, हम जो बात कर रहे हैं हम कितने पानी में हैं, हमें भी बंदा देखें जी, आजकल का ट्रेंड तो ये भी ट्रेंड है क्या, ऐसे है तो क्या ऐसे नहीं हो सकता, उसका अल्टरनेटिव पेश करें आप, उसको अच्छी गुफ्तगू से, अपनी अच्छी इखलाकियात से उस बुराई का प्रैक्टिकली खात्मा करना। क्या ख्याल है आप लोगों का?
बात तवील और नहीं करनी है, फिर बातें बहुत बढ़ जाएंगी। आपने कोई किसी ने एनीवे हमारी तरफ से, मेरी तरफ से पूरी ऑफर है जी आपके लिए, बहुत खूबसूरत सा। अभी तो हो सकता है कि ये प्रोग्राम के ज़रिए से फिर अभी आप तक ये बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन ही पहुंची है, तो इंशाल्लाह एनी टाइम जब भी आपका मूड हो आप जो है किसी प्रोग्राम में, नेक्स्ट प्रोग्राम में आप ये जो सिलसिला है चला सकते हैं। आप जब तक तैयारी भी कर लें, और हो सकता है कि मैं भी किसी अच्छे से सॉन्ग की तैयारी कर लूं। हो सकता है मैं आज आप लोगों को कलेक्ट करने के लिए कह रही हूं भी आ जाओ, मैं भी करूं, क्योंकि मेरी इतनी ना मेरी भी तैयारी हो। चले आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी पकड़ रहे हैं, तो चलें जी भैया हम भी तैयारी पकड़ लेंगे। और आप सुनेंगे तो कहेंगे ओ छुपे रुस्तम जी भाई, हम छुपे रुस्तम। हमने कहा जरा हम भी बाहर आ जाए, हम भी अपने मोजस लिसनर्स को बता दें, रिस्पेक्टेबल लिसनर्स को, मोजस हमारे सुनने वाले सामईन इकराम जो हैं, कि आप जब मैदान में आएंगे तो चलें जी फिर हम भी आ जाएंगे। लेकिन बात तो यही है ना कि जब आप मैदान में आएंगे तो फिर हम आएंगे, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि फिर क्या ख्याल है, तो ऐसे कैसे तो नहीं करना। चलें एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं, थोड़ा सा जी बहलाते हैं, और दूसरे सॉन्ग्स का जो अभी हमें फीडबैक मिली है कि अच्छे हैं, नाइस हैं, तो चलें ये भी आपको नाइस सॉन्ग लगेगा, क्या ख्याल है। चलें एक बेहतरीन सा सॉन्ग जो है वो सुनते हैं।

0: Salford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

जी बिल्कुल मौजूद सामईन इकराम, ब्रांडफोरेशन रेडियो 14:13 AM पर देखिए हमारा सफ़र जो है प्रोग्राम का कितनी जल्दी ढल गया और वक्त के गुजर जाने का एहसास भी नहीं हुआ। ब्रांडफोरेशन रेडियो 14:13 AM आपके लिए हमेशा से खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो लेकर आता है। आशा अख्तर की पूरी कोशिश होती है कि आप मेरे साथ रहते हुए कभी भी बोर ना हो और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को इंजॉय करने के साथ साथ उसको मज़ीद इसके अंदर हमने बेहतरियां कैसे पैदा करनी है ये मेरा आपके साथ हमेशा से वादा भी रहता है और गुफ्तगू का तकाजा भी रहता है और गुफ्तगू होती भी है। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है। जी बिल्कुल, आपके लिए हमने एक जो है पैकेज जो है ऑर्गेनाइज्ड पैकेज और तरतीब दिया हुआ छोड़ दिया है। आप का द बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ, तो आपने देखना है कि आप हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है वो कोई अच्छा सा गीत ज़रूर सुनाए और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ गिफ्ट बहुत अच्छा है आपके लिए। तो खैर आज इंट्रोडक्शन ही हो गया, तो नेक्स्ट मेरे प्रोग्राम में ज़रूर आप तैयारी करके आइएगा और मैंने सिलेक्ट करने हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें जो हैं और इनके लिए क्या सरप्राइजेज है ये तो जब आप फिर सॉन्ग सुनाएंगे तो फिर पता चलेगा। और अभी मुझे फिर कॉल मौसूल हुई कि जी आप सुनाए, मैंने कहा भई अब ऐसे तो नहीं ना, ऐसे कैसे हो सकता है भई, आप भी फिर आए ना, पूरा प्रोग्राम एक चल रहा हो और सारे पार्टिसिपेंट्स हों इसमें तो फिर मैं कुछ कर सकती हूँ, अदरवाइज़ तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं ऐसे मैदान में कूद पड़ूँ। तो क्या ख्याल है आप लोगों का? हमारा नंबर स्टूडियो को आपको पता है 01274306677। आप कॉल करें और हमारे साथ शामले गुफ्तगु हो और खूबसूरत सी आवाज़ हमें सुनाएं तो भई सभी जाहिर बात है इसमें वो जो है करेंगे। वैसे बात कुछ ऐसी होती है कि थोड़ी सी मुझे कभी कभी किसी बात पे हेजिटेशन होती है कि मैं ये कहूँ या ना कहूँ, लेकिन वो चूंकि एक इसे तो महावरतन भी कहा जाता है और एक माकूला भी मशहूर है इसके लिए, तो वो कहते हैं ओ प्यारे बबलू क्यों शर्माता है, रोना और गाना सबको आता है। तो वो फिर आपने किस अंदाज से आप इस बात से ना घबराएं कि जी देखिए कोई इतने बेसुरे तो होते नहीं है, कुछ ना कुछ तो हाथ तक सबको गुनगुनाना भी आता है, गाना भी आता है, तो हो सकता है आप में बहुत ज्यादा टैलेंट हो लेकिन आपको देखिए बाज़ औक़ात हमारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होता है लेकिन हमें खुद को नहीं पता होता और हमने उन टैलेंट को उस टैलेंट को जो है बस एक थोड़ा सा टच देना होता है निखरने का निखारने का। तो वो कैसे आपने निखारना है? टेक योर टाइम भाई, ठीक है इस ओके, आप टाइम टेक करें और इंशाल्लाह अब नहीं तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आप हमें जरूर अपनी खूबसूरत आवाज सुनाइएगा। क्या ख्याल है आप सबका? अदरवाइज आप ही एक अच्छे से गिफ्ट से महरूम हो जाएंगे, मेरा तो इसमें कुछ नहीं जाता है। क्या ख्याल है? तो इस बारे में ज़रूर सोचें। और दूसरा ये होता है कि एक महफिल सी जम जाती है और एक प्रैक्टिकल महफिल जमती है। अब बस ठीक है, देखिए सुनते तो हैं, एक बातें भी होती रहती हैं लेकिन आप भी जब आएंगे हमारे प्रोग्राम में तो फिर साथ कुछ भी आप कुछ भी सुना दें हमें तो एक बेहतरीन सी खूबसूरत सी महफिल बन जाएगी। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो जी जनाब ज़रूर इस बारे में सोचें और तब तक एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।

0: जी मौजूद सामीन इकराम, हमें एक कॉल मौसूल हुई है जी, और ट्राई करते हैं हम इनको लाइव लेने की। जी हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
1: गुड आफ्टरनून।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। देखें, इब्तिदा हुई है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। और आप बारिश का वेला कतरा बन रहे जी, जरूर हमें कुछ आप अनायत फरमाए जी।
1: अल्लाह ताला को सलाम करें, यकीन करें, वल्ला बा खुदा खुदा जानता है कि मेरा इस वक्त लंच टाइम है, तो लेकिन आपने हुक्म, आपका हुक्म जो होता है ना, यकीन करें कि आपका हुक्म कहता है कि मेरे लिए वाजिब हो गया, तो मैंने बोला आज कुछ भी हो जाए चलो मैं पहली कॉल जो है ना मैं ही कर देता हूँ। तो मैं तो वैसे मेरी तो ख्वाहिश है, या मैं खुद इतना मुश्ताक होता हूँ कि मैं आपसे कुछ सुनूं। माशाल्लाह जितनी अच्छी और जितनी खूबसूरत आवाज आपकी है, क्योंकि मैं आपको एवरी फ्राइडे जुम्मा मुबारक वाले दिन भी सुनता रहता हूँ। माशाल्लाह जैसे खूबसूरत अंदाज में, आवाज में आप नाते सुनाती हैं, और माशाल्लाह वैसे भी जो आपका ये वेंसडे का प्रोग्राम होता है, इसमें आप माशाल्लाह जितने खूबसूरत अंदाज में आप गुनगुनाती हैं गीत हो गजल हो माशाल्लाह, तो वो कहते हैं कि जैसे आप जैसे माशाल्लाह कहते हैं कि सूरज हो तो वहां चिराग की क्या हसीयत है।
0: अरे, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपकी लाइव जो है वो शेर शायरी भी आप करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, मैं सुनती रहती हूँ अक्सर, और आप भी किसी से कम नहीं है, और इतनी तारीफ का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आप आए हमारे प्रोग्राम में, ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा लग रहा है, और यकीनन आप हमें कुछ अच्छा ही सुनाएंगे, क्योंकि हमेशा की तरह आपको मैंने भी सुना है, आप बहुत अच्छा जो है वो रात को, आपको पता है लाइव आते हैं तो आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं जी। जी हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी, सुनाएं कुछ आप।
1: के साथ यकीन करें कि मैं आपको कोई बटर या मक्खन नहीं लगा रहा, मत समझे कि मैं आपको कोई बटर लगा, क्योंकि बटर वो कहते हैं ना कि आजकल तो बटर भी बड़ा महंगा हो गया।
0: मैं भी यही कहने लगी थी आजकल बटर वैसे महंगाई बहुत हो गई है भाई
1: नहीं नहीं मत समझे कि मैं आपको बटर लगा रहा हूँ, वो मुझे कुछ बात याद आ गई है। वो कहते हैं ना कि साहब मुझे बटर से डर नहीं लगता, मुझे उस छुरी से डर लगता है जिससे आप बटर लगाते हो
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जी जी
1: तो सबसे पहले तो माशाल्लाह आपकी जो सन ब्रेडफोर्ड एशियन की जो टीम है ना, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं दिल से हमेशा ही दुआ करता रहता हूँ, लेकिन दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रेडियो को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की
0: फरमाए इंशाल्लाह, आमीन आमीन इंशाल्लाह,
1: अल्लाह ताला इसको उस मंजिले मकसूद पर पहुंचाए के हाले हैं
0: आमीन आमीन,
1: जहां ये पूछना चाहता है
0: आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप इसका माशाल्लाह एक जो कहते हैं ना कि दस्ते रास्त जिसे कहते हैं वो है माशाल्लाह। और मैंने ये सिर्फ अपने प्रोग्राम में नहीं, मैं दूसरे प्रोग्राम्स में भी आपको अपनी रेडियो टीम के साथ देखती और सुनती रहती हूँ, और जिस कदर आप बाजौक भी हैं वो तो माशाल्लाह, अभी आप जैसे बातें कर रहे हैं वो आपके बाजौक होने का एक सबूत है, और इसके अलावा आप हिम्मत बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग के आप की मैं जो अशार और गजरे वगैरह सुनती हूँ बेहतरीन होती हैं।
1: ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी चाहत है, ये आपकी उल्फत है, यकीन कर अल्लाह बखुदा मुझ में इतना, वो कहते हैं ना कि मुझ में तो कोई आया ही बात नहीं है, ये तो आप जैसे लोगों का माशाल्लाह, वो कहते हैं कि आप लोग ऐसा कर्म फरमाते हैं तो ये मैं इस काबिल हो जाता हूँ, वरना मुझ में कोई ऐसी खास बात नहीं है, यकीन करें मैं आपसे सुन के जो है ना वो आप तक पहुंचा देता हूँ। ये कि आपको बस ये तालिब इल्म सबक सुनाता हूँ
0: जी जी जी, सुनाए सुनाए कुछ जरूर सुनाए।
1: मैं तो शाह साहब का बेहद मशकूर और ममनून हूँ, अल्लाह ताला उनके तंदुरुस्ती वाली
0: आमीन
1: जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला यानी के उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों की जिंदगी दराज
0: आमीन आमीन, सबकी दुआएं हैं, सबकी दुआएं उनके लिए, हमारे अपने लिए इंशाल्लाह आमीन।
1: वो खुद ही बहुत माशाल्लाह खूबसूरत शख्सियत है, और माशाल्लाह सभी से प्यार करने वाले
0: माशाल्लाह,
1: और हर एक को जिनके साथ लेके टीम को साथ लेके चलते हैं
0: माशाल्लाह, बेशक बेशक बेशक कोई शक नहीं,
1: तो मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ, आपकी माशाल्लाह पूरी टीम को माशाल्लाह है जी, और नहायत ही काबिल इज्जत काबिल एहतराम है जो आपकी उज़मा जी हैं उनका भी बेहद मशकूर और ममनून हूँ और
0: माशाल्लाह
1: काबिल इज्जत रिफत साहब हैं क्योंकि मुझे इनको ही सुनने की सादत हासिल है क्योंकि जहाँ पे जितना चिर मैं होता हूँ मैं सुनता रहता हूँ
0: बिल्कुल
1: तो यहाँ आपको सुनने की सादत हासिल है माशाल्लाह तो बहुत कमाल है जितनी तारीफ करूँ लेकिन मेरे पास भी टाइम बहुत कलील है क्योंकि मैंने अभी लॉन्च भी करना है लेकिन आपका हुक्म था
0: जी बिल्कुल अर्ज करें जी
1: मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ ठीक है
0: जी
1: वो एक बंदे ने ना प्रेस बॉन्ड ले लिया ठीक है तो वो चला गया मंदिर में दरबार में जिसको वो मरीज था चला गया कहता है बाबा जी मेरा प्रेस बॉन्ड निकल जाए ठीक है
0: अच्छा
1: तो वो जैसे बाहर आया जुतियां पहन लगा अपने जूते पहन लगा तो उसने जेब में देखा तो किसी ने निकाल लिया उसका
0: अच्छा
1: वो जुतियों जो ना जुतियों सुने भी चला गया कहते हैं बाबा जी ऊंचिया शाना वाले होते पुठिया समझा लो पहले पूरी गल सुन लिया करो तो फिर एक्शन लिया करो
0: बहुत खूब थैंक यू वेरी मच वाकई बहुत खूब आपका जोक से चले सिलसिला शुरू हुआ फिर अब जोक दर जोक
1: मैं तो पोएट्री सुनाता हूँ छोटी सी ठीक है
0: जी सुनाए
1: क्या लिखता है तेरे अलावा था ही क्या मेरे पास
0: जी
1: कि तूने भी मुझसे खुद को छीन लिया
0: क्या बात है
1: अजीब साने था कुछ भी टूट ना गिरा
0: वाह
1: मगर बिखरने ने मेरा सरापा छीन लिया
0: वाह क्या बात है जी
1: वो एक शख्स जो मेरी तमाम दुनिया था
0: हाँ
1: उसी ने मुझसे मेरा रास्ता छीन लिया
0: आए हाय हाय क्या बात है जी
1: आखिरी शेर आपकी सुनातों की नजर करना चाहता हूँ
0: जी
1: अब आईने से भी नजरें नहीं मिला पाता अब आईने से भी नजरें नहीं मिला पाता किसी की याद ने मुझसे मेरा चेहरा छीन दिया
0: आए हाय हाय हाय क्या बात
1: आशा जी बहुत शुक्रिया
0: आपका भी बहुत
1: सलामत रखे
0: आपको
1: लेकिन अब मेरा लंच का भी टाइम जो है
0: जी जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया
1: तो दुआ में याद रखिएगा आपको सलामत रखे
0: आपको भी
1: आपके साथ है और इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि आप मुझे अपनी नेक दुआ में याद रखें
0: इंशाल्लाह थैंक यू
1: अल्लाह हाफिज
0: जी सामईन इकराम इब्तिदा हो चुकी है हमारे प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत कॉलर की और आप सब ने सुना आप सबके सामने रहा ये सब कुछ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो अब तो आप सबको जो है थोड़ा सा शायद बिल्कुल नहीं होने की ज़रूरत आपका प्रोग्राम है और चले अभी तो फिर ये जो मेरा दौरानिया है प्रोग्राम का ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वेंसडे बस आपने पूरी तैयारी के साथ आना है जी और देखे फिर अब इब्तिदा हो गई है तो फिर इंशाल्लाह प्रॉमिस है मेरा भी आपके साथ कि अल्लाह पाक हम सब के ऊपर खैरियत रखे जी आमीन इंशाल्लाह तो जी एक वधिया हो सकता हो पंजाबी दा होवे हो सकता हो जेड़ा भी मर्जी होवे मैं कहा चल जाते जाते थोड़ा जिहा तो पंजाबी दा टच लगा ही दईए क्योंकि गल ये हुंदी के मूड की भी गल हुंदी मैं अज वेख्या कि अज मेरे जिहड़े सुनने वाले सारे उन्हां दा मूड जिहड़ा ओह उर्दू दे उत्ते चल रहा तो मैं कहा चलो जी चलाई जाओ तो हुण तुहानूं डरने की बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं देखो तो जी आपके सामने इतना टैलेंट उभर के आया है और आप बेहतरीन किस्म की तैयारी के साथ और Honestly speaking, आपको जो एक वंडरफुल जो सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा ना आप खुश हो जाएंगे बस आप तैयारी पकड़ें और फिर फ्राइडे के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह आप लाइव कॉल्स कीजिए और फिर वहां पे जो है वो इस्लामिकली आपके लिए एक ऐसा इंशाल्लाह बेहतरीन पैकेज होगा और सरप्राइज होगा सरप्राइज गिफ्ट के आप बहुत खुश होंगे क्यों ना करें भाई आप सब हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत ही ऑनरेबल जिसे कहते हैं हमारे लिसनर्स हैं आप हमें मोटिवेट करते हैं मोटिवेशंस आपकी तरफ से हमें मिलती हैं और फीडबैक बहुत अच्छी होती है तो यकीनन हम आपके लिए बहुत बेहतरीन काविशें करेंगे जी हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक चलें ये कर लेते हैं कि आप तैयारी के साथ आना चाहते हैं तो आज मैंने डिस्क्लोज कर दिया आपके सामने ये पैकेज, तो नेक्स्ट आप बहुत वंडरफुल तैयारी के साथ आइएगा और बेहतरीन हमने आपसे सॉन्ग सुनने हैं। और आशा अख्तर भी आपके सामने एक सॉन्ग तो चलें बनता ही है, मैं भी ज़रूर पेश करूंगी। एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं, थोड़ा सा चलें आए। आई होप यू विल इन्जॉय दिस सॉन्ग।

जी मोहतरम सामईन-ए-किराम, इस वक्त मेरे पास लाइव कॉल है जी। लाइव पे लेते हैं, आप अपना नाम तो प्लीज बता दें। है अभी नहीं कहे, डायलॉग उधर मारिएगा लाइव के ऊपर, अभी नाम तो बता देना अपना। इकबाल भाई, इकबाल भाई साहब बात कर रहे हैं, तो चलें इनकी लाइव लेते हैं, इनको तो फिर देखते हैं ये क्या बोलते हैं। जी इकबाल भाई सुन रहे हैं? हेलो, एक मिनट, गड़बड़ हो गई। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलें दोबारा कर लेंगे, पता नहीं आवाज नहीं आ रही है इनकी। अभी गाना ही सुनते हैं हम मौजूद सामीन इकराम।

0: जी हेलो। हेलो
1: हेलो हेलो,
0: जी, अब आवाज आ रही है आपकी। जी बोले इकबाल
1: आपकी
0: भाई,
1: आवाज नहीं आ रही मुझे। बिल्कुल
0: आप मेरी आवाज नहीं आ रही आपको?
1: बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आ रही पर इतनी नहीं।
0: चलो थोड़ी थोड़ी समझ तो आ रही है ना आपको?
1: नहीं बस दोबारा करते हैं, ट्राई करते हैं।
0: दोबारा कर ले फिर।

0: मजे सामीन इकराम कॉल। इकबाल भाई खैर है? अभी थोड़ा सा धीरज रखें, नेक्स्ट प्रोग्राम में फुली तैयारी के साथ आइएगा इंशाल्लाह। और जो दो आप कह रहे थे ना कि बोल जो है ना वो आपने जिसे कहते हैं कि याद किए हुए थे, तो अभी पूरा सॉन्ग जो है उसको अच्छी तरह रट्टा शट्टा लगा लें, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में जी इंशाल्लाह आपको लाइव लेंगे। तो लाइव कॉल्स मौसूल होना शुरू हुई, तो जब हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है जी, बिल्कुल एक मिनट में हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। और यकीन करें कि नेक्स्ट वीक आपका प्रोग्राम होगा आपके लिए। क्या ख्याल है आयशा अख्तर रखेंगी आपका प्रोग्राम आपके लिए, और आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा भरपूर तरीके से, जो भी आपने कुछ भी आपने बोलना है, और स्पेशली जो हमारे सिंगर्स होंगे उनके लिए जबरदस्त सा जो है एक प्राइज होगा। तो देखिए वो फिर बाद की बात है कि आप पार्टिसिपेंट्स हम देखेंगे, आप देखेंगे कि आपका जौक शौक, और इंशाल्लाह होपफुली आपके लिए बेहतरीन सा गिफ्ट होगा जी, सरप्राइज गिफ्ट है जरूर नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह, और फ्राइडे के प्रोग्राम में इंशाल्लाह बहुत इस्लामिकली आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। अल्लाह पाक आपका हम सबका हामी व नासिर हो, आपका अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह फ्राइडे आपसे मुलाकात होती है जी। बहुत ख्याल रखिएगा, आप मुझे इजाजत दें ऐशा अख्तर को। ओके जी, अल्लाह हाफिज, दे रब रखा।
1: 77 सेंड मनी वर्ल्ड वाइड विद वेस्टर्न यूनियन, सेंड मनी योर वे टू बैंक अकाउंट्स, मोबाइल वॉलेट्स और फॉर अ कैश पिकअप, विजिट पार्टिसिपेटिंग पोस्ट ऑफिसेस, योर चेंज एंड अदर रिटेल पार्टनर लोकेशंस। प्रेफर टू सेंड मनी ऑनलाइन, enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
6: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
3: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
7: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team.
8: You're listening to 01274 Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर। साहब यहाँ स्टूडियो में समझ में नहीं आता, कल मैं सही से प्रोग्राम करके गया हूँ, आज फिर यहाँ मेरा बैकग्राउंड भी मौजूद नहीं है। बहरहाल आज हम आगाज करेंगे उसके बिना ही। हमारी नशियाता 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की सस्सीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। हमारे वह अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है वो तशरीफ ला सकते हैं, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के किसी भी शहर में या वेल्स के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी बज़्म में तशरीफ लाना चाहें, हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274300

7. मेरी इंतहाए गुजारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। इब्तिदा उसके नाम से जो हम सबका मालिक है, खालिक है, पालनहार है, राजिक है, जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। वही जो हमारी छोटी सी छोटी खता और बड़ी से बड़ी गलती को देखता है, सुनता है और उसे दरगुजर करने की कुव्वत रखता है। यकीनन वह हम सब का रब है। दोस्तों, कबूल कीजिए गज़ल उसने छेड़ी के मेज़बान रिफत अब्बास का, मोहब्बतों और अकीदतों से लबरेज़ सलाम, प्यार भरी नमस्कार, दिल की गहराइयों से सत श्री अकाल, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। और कैसे हैं आपके हाल चाल। गज़ल उसने छेड़ी का आगाज़ उसके नामे नामी से हो चुका है, जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदावंद करीम कहकर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कहकर प्रार्थना करता है, कोई वाहिगुरु कहकर अरदास करता है, और कोई गॉड या लॉर्ड कहकर घुटने टेकता है। उसे किसी भी नाम से किसी भी वक्त किसी भी लहजा किसी भी आन किसी भी दुख किसी भी तकलीफ किसी भी परेशानी किसी भी मुसीबत में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। और दोस्तों, सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं, मांगते एक ही से हैं, और बेशक वो हम सब का रब है, वो हम सब का रब्बुल आलमी है। आगाज हमेशा की तरह एक खूबसूरत गीत से होगा, गो मेरे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिनका तारुफ हम हमेशा बाद में कराते हैं। अभी तो वक्त है एक हसीन गीत के आगाज से, जिसे हम किया करते हैं अपने उन तमाम मोहब्बत करने वाले, चाहत रखने वाले और प्यार करने वाले सामईन और नाजरीन और नादीदा लिसनर्स और सोते मुजाहिदों के नाम के, जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है। आज ओपनिंग गलत हुई है, मेरा टाइटल मौजूद नहीं है, और मुझे बग़ैर उसके ज़ाहिर 40-50 साल हो गए हैं, आदत नहीं है। बहरहाल मैं अभी शाह साहब से बात करता हूँ, लेकिन प्रोग्राम तो बहरहाल आप तक पहुँचाना है। तो आप सबकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम आपका ये तोहफा कबूल कीजिए।

0: दोस्तों आज मेरे फ़ोन में कुछ ख़राबी हो गई थी तो मैं अपना फ़ोन घर छोड़ के आया हूँ और भूल गया वहाँ, वरना वो कुछ उससे फ़ायदा होता। शाह साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मुझे ज़रा फ़ोन कर लीजिएगा स्टूडियो पे। आप सुन रहे हैं ब्रॉडफ़ोर्ड एशियन रेडियो, मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। तो फ़िलहाल मैंने बैकग्राउंड में ये जो मैसर आ सका है, क्योंकि मेरा शायद गलती से किसी ने डिलीट कर दिया है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा किसी तरह भी। बहरहाल शाह साहब अभी इस मसले को हल करेंगे, जाहिर है कि दोबारा से उसे वो डालेंगे उसमें। मेरा असल में ये जो हमारे बड़े बड़े डीजे आते हैं ना, इनकी एक आदत बहुत बड़ी और बुरी आदत होती है पैनल को छेड़ना। आज पूरा पैनल डिस्टर्ब हुआ हुआ है, आई डोंट नो व्हाट्स हैपन, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, लेकिन तमाम नॉब्स जो हैं ऊपर नीचे से। मैंने बताया हुआ है आपको कि शाह साहब स्टूडियो तैयार करके जाते हैं आपके लिए, आप आइए अपना प्रोग्राम कीजिए और खामोशी से चले जाइए। किसी भी नॉब को आपको हाथ लगाने की कतई इजाजत नहीं है। आप तो यहाँ ब्रॉडफ़ोर्ड एशियन रेडियो में प्रोग्राम करते हैं, वरना किसी और रेडियो पर कर रहे हैं और इस किस्म की गलती कर रहे तो आपको उसी वक्त सेक कर दिया जाएगा। आप इसकी अहमियत ही नहीं जानते। आपको जब इल्म नहीं है पैनल के मुताल्लिक तो आप ये नॉब्स को क्यों छेड़ते हैं? अब मेरा प्रोग्राम तकरीबन 10 मिनट 12 मिनट, एक तो मेरे पास आज फोन नहीं है और दूसरी बात यह कि मेरा टाइटल गायब है, वहां से डिलीट हुआ हुआ है। प्रोग्राम करने का मजा खराब हो जाता है जब आगाज प्रोग्राम ही इस तरह से हो। बहरहाल आपका हमारे साथ 5 बजे तक रहेगा, नामसाई हालात में भी आपका तो साथ हमारे रहता ही है, तो वक्तन मैंने वक्ती तौर पर यह टाइटल लगा दिया है। ये मेरे कानों से मानुष नहीं है।
1: रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज.uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर बोझ पाकिस्तान ज्वेलर से आए।
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार।
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER, 01274-491-442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306 77.

आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूं शकील साहब का बंडले से, जिन्हें एहसास हुआ कि रिफत भाई, मुझे अंदाजा है आपको खासी कोफ्त हो रही होगी, लेकिन ऐसे ऐसे हुआ था। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे। हमने आपका गीत भी जो आपने सुनना चाहा है क्यों कर रखा है, लेकिन उससे पहले हम चल रहे हैं वकार मियां की जानिब, जो इस वक्त हमें वेकफील्ड में सुन रहे हैं, और आज वो लिवरपूल की जानिब सफ़र कर रहे हैं। कहते हैं कि बस आप से अपना तोहफा वसूल करके इंशाल्लाह मेरी रवानगी होगी। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत के साथ लेके जाए और खैर आफियत के साथ वापस लाए। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुश और खुर्रम और सेहत से रखे। आपका तोहफा हाजिर है, इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको बंडले लिए चलेंगे, जहाँ शकील भाई, जिन्हें बहुत एहसास हुआ मेरी कोफ्त का, बहुत नवाजिश। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे। शकील भाई, आपका तोहफा भी हमने तैयार किया है, लेकिन ज़रा इन्हें रुख्सत कर दें वेकफील्ड में वकार मियां को, फिर आपकी तरफ आते हैं।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। आप सब जानते हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था अपने मोहतरम लिसनर और कॉलर शकील साहब का, जो इस वक्त हमें बानले में सुन रहे हैं। हम उनका तोहफा उनकी नज़्र करना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये गीत हमें कमर्शियल के वक्फे तक ले जाएगा। उसके बाद आपका पसंदीदा सेगमेंट हम लेकर हाजिर रहेंगे और गीत आज मुंतखब किया है डॉक्टर माहरुख साहबा ने ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से। हम अपने तमाम सुनने वालों को ये दावत देते हैं कि आपके जहन में भी अगर कोई ऐसा गीत मौजूद हो जिसमें दो आवाज़ों में जिसे रिकॉर्ड किया गया हो, हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हम एक दिन हिंदुस्तानी और एक दिन पाकिस्तानी गीत लेकर चल रहे हैं, एक शायर एक गीत दो फनकार में। अब हम चलते हैं आपको लेकर बनले, और शकील भाई आपका बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का और मेरी थोड़ी सी मेंटल कैफियत को काम करने का। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और रियाज साहब, आप का नाम शामिल कर लिया गया है, आपने शायद सुना नहीं। रिजवान रिजवी साहब, आपने जो गीत सुनना चाहा है वो मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह शामिल प्रोग्राम करेंगे।

0: बहार आई। आज के शायर हैं मशहूर ज़माना आनंद बख्शी। आप सब जानते हैं कि उन्हें ऊपर वाले ने खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा था। उन्होंने भी कई गीत ड्यूट लता मंगेशकर के साथ और सोलो सॉन्ग भी उन्होंने गाए। सो आज के हमारे शायर आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में यही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में।
1: जब जब बाहर

दोस्तों लता मंगेशकर का साथ दे रहे थे महेंद्र कपूर भी। ये था हमारा एक शायर, शायर थे आनंद बख्शी। फिल्म का नाम था जब जब बहार आई, 1967 की। मौसीकी से इस गीत को संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। अभी चंद में पहले हमारे बहुत ही खूबसूरत लिसनर जनाबे शकील साहब तशरीफ लाए थे। मैंने बताया था उन्होंने जो गीत सुनना चाहा था, जो उनकी नज़र किया मैंने, अभी अभी तशरीफ लाए हैं मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब, और एक खूबसूरत गीत सुनना चाहते हैं जो हमने नोट कर लिया है और हम उनकी नज़र करेंगे। इरादा तो ये था कि रिजवान रिजवी साहब और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा का तोहफा कराची में मौजूद हैं उनके हवाले कर दें, लेकिन अभी अभी उन्होंने मुत्तला किया कि वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बाद में आकर बताएंगे। सो हम ऐसा करेंगे कि जब वो तशरीफ ले आएंगे तो उनका तोहफा उनकी नज़र कर देंगे। मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक।

और दोस्तों अब हम चल रहे हैं आपको लेकर खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान, जहाँ पर हमारे खूबसूरत लिसनर परदेसी मजीद साहब मौजूद हैं और उन्होंने एक गीत सुनना चाहा है। शकील साहब, नवीद साहब, रिजवान रिजवी, चौधरी रुखसार, अहमद साहब, इन अहबाब के नाम और गीत उन्होंने जो मुंतखब किया है आप तमाम अहबाब के लिए वो कुछ यूं है। बेइंतहा शुक्रिया परदेसी मजीद आमद का, आपका तोहफा आपके अहबाब के हवाले।

0: on 1413 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
11: और आइए दोस्तों, अब चलते हैं कराची, पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात। उनका तोहफा उनकी नजर करते हैं, कबूल कीजिए।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूं रिफत अब्बास। आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। हमारी ये नशियात आप खिदमत में पेश की जा रही हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से 1413 मीडियम वेव पर। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त ऑनलाइन सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। अभी आप हमारे मोहतरम चौधरी रुखसार रहमत साहब का तोहफा वसूल कर रहे थे। अब हम चल रहे हैं आपको लेकर ओल्डहम, जहां मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब मौजूद हैं और अपनी पसंद का ये खूबसूरत गीत सुनना चाहते हैं। अय्यूब चौहान साहब, आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बेइंतहा शुक्रिया। आपका तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए। इसके बाद हम मजलिस पर चलेंगे।

और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब की पसंद, मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कलाम था और बहुत खूबसूरती से इसे आपकी खिदमत में पेश किया उस खूबसूरत दुर्वेश सिफत इंसान ने जिसे दुनिया इनायत हुसैन भट्टी के नाम से जानती थी। बे इंतहा सादा और मासूम शख्सियत के मालिक थे, बेशुमार फिल्मों में आप हीरो का किरदार आपने निभाया और बहुत कामयाबी से निभाया, उसमें भी सादगी होती थी। अल्लाह ताला हमारे इस खूबसूरत फनकार इनायत हुसैन भट्टी के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यही दुआ हम मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के लिए करते हैं कि जिनका कलाम इस कदर सादा मासूम था कि दिलों में उतर जाता था, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। अब हम आपको लिए चल रहे हैं मिडिल्सब्रा, जहाँ हमारी प्यारी सी बावची खाने की रानी सुमैरा बिटिया ब्रैडफोर्ड 3 से एक हसीन तोहफा अपनी प्यारी प्यारी कज़न्स के नाम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपकी और आपकी कज़न्स की इस मोहब्बत को यूं ही कायम दायम रखे। नज़ीर अहमद साहब अभी अभी हमारी बजन में शामिल हुए हैं, लैया पंजाब पाकिस्तान से। हमेशा की तरह उनका वही पैगाम कि अस्सलामु अलैकुम, आपको आपके तमाम सामईन और नाज़रीन को अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आप खुद बहुत अच्छे हैं तो आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है। वालेकुम अस्सलाम।

और दोस्तों अब हम आपको लिए चल रहे हैं हमारी काबिल सदा एहतराम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहिबा लंच ब्रेक पर हमारे हमराह मौजूद हैं। आप सबकी खिदमत में उनका मोहब्बत भरा सलाम हम पहले पेश कर चुके हैं। अब वक्त हुआ है उन्होंने आपके लिए एक बे इंतहा खूबसूरत तोहफा भेजा है और ये तोहफा हुस्न इत्तेफाक है कि अभी शकील भाई अदीम हाशमी का कलाम सुनाकर गए थे। कहती हैं कि बहुत खूबसूरत इंतखाब था उनका और साथ ही साथ मैंने भी आज जो गज़ल मुंतखब की है अदब के शहदाइयों और शेर के मतवालों के नाम वो हजरत अदीम हाशमी मरहूम की है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफरत फरमाए। आपका इंतखाब डॉक्टर साहब हमेशा लाजवाब होता है और जो गज़ल आपने आज मुंतखब की है तमाम सुनने वालों तक पहुँचाने के लिए, ये उनकी शोहरा आफाक गज़ल है और यूँ तो उनकी बहुत गज़लें मारूफ हुई लेकिन वजह शोहरत ये गज़ल बनी उनकी कि कठी गई जुदाई भी कब ये हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए मेरे भी दिन गुजर गए, तेरे लिए चले थे हम तेरे लिए ठहर गए, तूने कहा तो जी उठे तूने कहा तो मर गए, वो भी गुबारे खाक था हम भी गुबारे खाक थे, वो भी कहीं बिखर गया हम भी कहीं बिखर गए, कोई किनारे आप जो बैठा हुआ है सर नगूं। क्या खूबसूरत इंतखाब है डॉक्टर साहब और बहुत हासिल एक गजल शेर है। कोई किनारे आप जो बैठा हुआ है सर नगूं, कश्ती किधर चली गई जाने किधर भंवर गए। आहा, कोई किनारे आप जो बैठा हुआ है सर नगूं, कश्ती किधर चली गई जाने किधर भंवर गए, वो बारिश वसल हुई सारा गुबार धुल गया, वो बारिश वसल हुई सारा गुबार धुल गया, वो भी निखर निखर गया हम भी निखर निखर गए, और इतने करीब हो गए इतने रकीब हो गए, वो भी अदीम डर गए हम भी अदीम डर गए। क्या मख्ता है साहब, वाह वाह वाह वाह, इतने करीब हो गए इतने रकीब हो गए, वो भी अदीम डर गए हम भी अदीम डर गए। डॉक्टर साहब बे इंतहा खूबसूरत इंतखाब था आपका और हमने अदब के शहदाइयों और शेर के मतवालों तक पहुंचा दिया है। अब आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, इसे कबूल कीजिए और इसके बाद रियासत साहब घर तशरीफ ला चुके हैं, उनका तोहफा उनकी नजर करेंगे। डॉक्टर साहब हमेशा की तरह आपका बे इंतहा शुक्रिया हमारी हिम्मत अफजाई और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाकर इसकी इज्जत और तौकीर बढ़ाने का। आपका तोहफा

0: حضرت سے یہ تحفہ تھا لیا پنجاب پاکستان میں نذیر احمد صاحب کے نام. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا.
1: On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका.
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का.
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं.
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL.
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644.
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर.
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए.
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं.
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है.
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY.
8: टेलीफोन 01274731555. मंगला केटरिंग सर्विसेज UK. दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए.
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान.
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442.
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है.
12: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए. आज ही तशरीफ लाइए. ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA. फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन. अरे ये पूरे ब्रेडफुट में क्या है शोर?
13: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर. रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला.
8: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर. मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफुट, BD8 8AX. फोन ब्रेडफुट 4955555. हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर.
13: मैनिंगम सुपर स्टोर.
1: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: اور دوستو, آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی, جو اپنے اختتامی گھنٹے میں داخل ہو چکا ہے. ہماری یہ نشیات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویف پر, یارکشائر کی اس حسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے آن لائن سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk पर। अब हम चलते हैं हडर्सफील्ड की हसीन फजाओं में और पेश करते हैं तोहफा जनाबे रियासत साहब और उनके अहले खाना का। आपकी आमद हमारे प्रोग्राम को हमेशा चार चांद लगाती है। खुश रहिए, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और हाँ अजहर साहब, कैसे हैं आप? हमने आपके लिए भी गीत मुंतखब कर रखा है। रियासत साहब की तरह अजहर साहब दीवाने हैं, शदाई हैं खां साहब मेहंदी हसन खां साहब के। तो अब चलते हैं हम हडर्सफील्ड और पेश करते हैं रियासत साहब, आपका तोहफा कबूल कीजिए।

और दोस्तों ये पसंद थी रियासत साहब की हजरतवील में, और अब हम चल रहे हैं आपको लेकर हिंदुस्तान के मरदमखेज शहर अमरोहा, जहां से मशहूर और मारूफ मुसन्निफ जनाब हुमायूं परवेज साहब हमारी बज़्म में मौजूद हैं, और उनका तोहफा और उनके अहल खाना का तोहफा उनकी नज़र करते हैं, और इसके बाद अजहर भाई आपका तोहफा हम आपकी नज़र करेंगे। ये आपकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है, किस कदर मोहब्बत से आप तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत और तौक़ीर बढ़ाते हैं। आपका मोहब्बत भरा सलाम मैं तमाम सामीन और नाज़रीन तक पहुंचा रहा हूं, और चलते हैं अमरोहा और पेश करते हैं हुमायूं परवेज साहब का तोहफा उनकी मोहब्बतों के नाम, के साथ समंदर पार से तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम में इज़्ज़त बख्शते हैं। आपका तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए।

0: Passion Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 Athington Street ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
7: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
7: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffield Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: saferaider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज.uk
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800

करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है। अगर इस आस पे बैठे कि दुनिया बस हमें सुनने की खातिर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। करो जो बात करनी है, अगर इस आस पे बैठे कि दुनिया बस हमें सुनने की खातिर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता।

करो जो बात करनी है, अगर इस आस पे बैठे कि दुनिया बस हमें सुनने की खातिर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पैरे, तमाशा गाहे आलम से गुजरती जाएगी खिलकत, बिना देखे बिना ठहरे। जिसे तुम वक्त कहते हो धुंधलका सा कोई, जैसे जमीन से आसमां तक है। ये कोई ख्वाब है जैसे, नहीं मालूम के इस ख्वाब की मौलत कहां तक है। करो जो बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ गेनर्स चाहते आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ गेनर्स चाहते आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं। और यही नशियात अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो, चाहे आप एंड्रॉइड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त और ज्यादा मेमोरी स्पेस भी नहीं लेते। और सामीन यही नशियात आप लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर भी सुन रहे हैं, और यही नशियात इस वक्त CV FM मिड्सब्रा से 104.5 FM पे भी पेश की जा रही है। और सामीन अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेजबान सैयद हसन हाजिर हैं, और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलूस पर आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप मोहतरम और मुअज्जज सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज़ सुन रहे होंगे, हमारी ये नशियात सुन रहे होंगे, अल्लाह के फजल करम से आप सभी बखैरियत होंगे। जी हां सामीन, मौसम के बदलते रंग, उम्मीद करते हैं कि आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे। इस वक्त अगर आप हमें टिकटॉक पे देख रहे हो तो आपसे इल्तमास है कि डबल टैप कीजिए ताकि आप हमारी इस महफिल में शरीक हो सकें। कोई फरमाइश हो तो भी हमें बता सकते हैं, आप स्टूडियो का नंबर मिला सकते हैं आप 01274306677, ब्रेडफोर्ड 01274306677 के जरिए आज की इस बज्म का आप हिस्सा बन सकते हैं। आप सभी को अपने दिल की अथाह गहराइयों से हम खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी हमारे साथी इस वक्त हमें टिकटॉक पे ज्वाइन कर रहे हैं, सभी को खुश आमदेद, और जो हमें इस वक्त रेडियो के जरिए सुन रहे हैं, कारों में सुन रहे हैं, घरों में सुन रहे हैं, उन सभी को भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद। और सामीन हमेशा की तरह आज का ये प्रोग्राम भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहले हिस्से में कुछ गीत हमारी पसंद के, कुछ आपकी पसंद के, और इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप सुनने वालों की होंगी लाइव कॉल्स, जिसमें आप तशरीफ ला सकेंगे, नंबर आप मिला सकते हैं, नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए आज की इस महफिल का हिस्सा बनना चाहें तो वो भी नंबर कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा ही सहल है, 00447। ये तो हुआ UK का इंटरनेशनल कोड मोबाइल्स के लिए, 00447। उसके बाद है 800-599-563, दैट्स 00447-800-599-563। आइएगा और आज की इस बज़्म में हमारा साथ निभाइएगा। आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद। और इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप जो हमें टिकटॉक के जरिए ज्वाइन करेंगे, आप सभी को भी मौका देंगे कि आप भी इसी टिकटॉक की नशिस्त में तशरीफ लाइएगा। यहीं से हम आपकी कॉल्स को लाइव ले लेंगे, और फिर ना सिर्फ आपकी ये कॉल टिकटॉक पे जाएगी बल्कि लाइव हमारे सुनने वाले भी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में आपको सुन पाएंगे, ब्रेडफोर्ड में, शेफील्ड में, मिल्सब्रा में, और इसके गिर्दोनवा में। जनाब किबला सफदर हमदानी साहब, दिल की अथाह गहराइयों से आप जैसे आसातजा को आज की इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। ये जब आपकी आमद हो जाती है तो हम समझते हैं कि अब हमारा बोलना बनता ही नहीं है। कहते ना कि बेसबब बोलते रहना नहीं आदत मेरी, बेसबब बोलते रहना नहीं आदत मेरी, तुझसे मिलता हूं तो जाने मुझे क्या होता है। और साबिन आपको बताते चलें कि आज के इस प्रोग्राम में हम जितने भी गीत पेश करेंगे वो रेडियो पे तो हमारे सुनने वाले सुन पाएंगे, लेकिन जो हमारे टिकटॉक के सुनने वाले हैं उनसे यही इल्तमास है कि प्लीज आप हमारी वेबसाइट पे आ जाइए ताकि आप
हमारे इस सारे प्रोग्राम का लुत्फ उठा सकें उसके लिए हमारी वेबसाइट आप सभी जानते हैं 01274306677 तो रहा हमारा नंबर। हमारी वेबसाइट है www.bradfordasianradio.co.uk Bradford Asian Radio एक ही लफ्ज़ bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट है, ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा और ताकि आप अगर कुछ भी कोई कलाम सुनना चाहें, कोई ख़ास पसंद हो, कोई ख़ास ट्रैक हो तो हम आपके लिए वो पेश करेंगे और वो आप सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट के जरिए सुन सकते हैं या फिर लोकल हमारे रेडियो स्टेशन 1430 AM पर या फिर 96.7 FM पर या फिर 104.5 FM के जरिए भी सुन पाएंगे। आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत सदाबहार गीत से और गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम।

और सामिन, अभी आप लता की आवाज में एक खूबसूरत गीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आया होगा और AMK आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप इस वक्त TikTok पे हमारे साथ लाइव हैं, खुश आमदीद, वेलकम। और अब यूं करते हैं कि एक और खूबसूरत गीत आप सभी सुनने वालों के नाम करेंगे। ऐ दोस्त मेरे सीने की धड़कन को देखना, ऐ दोस्त मेरे सीने की धड़कन को देखना, वो चीज तो नहीं है मोहब्बत कहें जिसे।

और सामिन, अभी आप तो ये खूबसूरत गीत तो सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आया होगा। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखते, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। खूबसूरत गीत था। और सामिन, अब अगली ब्रेक में ज्यादा वक्त नहीं है, तो एक छोटा सा गीत आपके लिए हमने चूज किया है। ये गीत आपके नाम है और इसके बाद हम चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद होगी आप सुनने वालों से मुलाकात। अगर आप टिकटॉक पे हमें ज्वाइन करना चाहें तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274306677, ब्रेडफोर्ड 01274306677। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए हमें ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए 00447-800-599-563। आइए तो अगला गीत आपके लिए पेश करते हैं और इसके बाद हम चलेंगे ब्रेक पे।

0: contracts or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
7: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
2: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
7: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
9: You're listening to Bradford Asian Radio,
10: 1413 AM and online.

और सामिन्या ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद। और अगर अभी अभी आपने हमारा ये रेडियो स्टेशन सुनना शुरू किया तो आपको बताते चलें कि आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ इन साथ आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ केन्या से आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से ब्रेडफोर्ड और इसके आउटस्कर्ट्स में सुन सकते हैं। और यही नशियात इस वक्त आप लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर लिंक FM के जरिए सुन रहे हैं। और यही नशियात इस वक्त CV FM मिल्सब्रा से 104.5 FM पे भी पेश की जा रही है। और अगर आप चाहें तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारी ऐप्स मौजूद हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त और ज़्यादा मेमोरी स्पेस भी नहीं लेते। और हाँ, अगर आप हमें टिकटॉक पे इस वक्त देख रहे हैं तो आपको भी खुश आमदेद कहेंगे। हमारे सामने एक शेर है जो थोड़ी देर में हम पढ़ के सुनाएंगे, ना जाने हमारे किस सुनने वाले ने ये भेजा है। और जो भी हमारे साथी आना चाहें आपको भी खुश आमदेद कहेंगे, डबल टैप कीजिएगा ताकि आज की इस महफिल में आप हमारे साथ शामिल हो सकें। जब भी आंखें मिली हैं आंखों से, जब भी आंखें मिली हैं आंखों से, दिल ने दिल का मिजाज पूछा है।

और सामिन, अब बारी आ चुकी है शायद आपकी, आप इस वक्त शफील में हमें सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया। अगला गीत आपके लिए हम पेश करेंगे, उससे पहले आपके लिए एक जोक भी पेश करेंगे। और आमिर हुसैन साहब, बड़े अरसे बाद आपकी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा। न्यूज़ बरी में इस वक्त आप हमारी ये नशात सुन रहे हैं, और आपने भी कहा है कि आप इस वक्त टिक टाक पे हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी हाँ, आपको हम इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, रंगरेज आप रिक्वेस्ट भेजिए ताकि हम आपको शामिल कर सकें। और शायदा आपके हवाले से जो गीत आपने सुनना चाहा, गीत हमने क्यों कर लिया है, लेकिन गीत से पहले एक जोक याद आ गया। अच्छा लग रहा है कि हमारे जो टिक टाक पे सुन रहे हैं उन्हें भी हम सुनाते चलें वो जोक। ओन शाह खुश आमदेद, जितने भी हमारे सुनने वाले आ रहे हैं आप सभी को खुश आमदेद कहते हैं। डबल टैप कीजिएगा ताकि आज के इस प्रोग्राम का आपको हम हिस्सा बना सकें। और गीत शायद जो आपने सुनना चाहा, उससे पहले एक जोक मुझे याद आ रहा है। कहते हैं कि एक मियां बीवी एक नया जोड़ा बातचीत कर रहे थे, और जो वाइफ है उन्होंने कहा कि अगर खुदा ने खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आप बताइए कि हमारी मुस्तकिल आपका मुस्तकबिल क्या होगा, यानी कि आप आपके ऊपर ये कैसा सानिया होगा, आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, तो बताइए कि क्या आप मेरे बगैर जी सकेंगे। वाइफ ने कहा, तो हस्बैंड ने कहा कि बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी गुजार सकूँगा, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। फिर वाइफ, आप जानते ही हैं कि किस तरह का तजुर्बा होता है, वाइफ ने मजीद कुरेदने की कोशिश की कि नहीं बताइएगा कि फिर आप क्या करेंगे, खुदा ना खास्ता मैं इस दुनिया में नहीं रहती तो आप क्या करोगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने आपको बता दिया जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपके बिना जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खुल के बात मुझे बताओ कि अगर मैं मर गई तो क्या तुम और शादी कर लोगे। तो हस्बैंड ने कहा कि देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने कहा कि मैं अगर तुम इस दुनिया में ना रही तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो वाइफ फिर कुरेदती है, कहती है लेकिन मुझे ये बताओ कि फिर तुम क्या करोगे। तो हस्बैंड ने कहा कि देखो, मैंने बताया मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बगैर। तो वाइफ क्या कहती है कि अच्छा, तुम शादी तो नहीं कर लोगी। तो हस्बैंड ने कहा कि देखो, पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो चलिए अब वही गीत, मैं तेरे प्यार में पागल। शायद उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आएगा, खूबसूरत गीत है, आपने इसकी फरमाइश की है, गीत आपके नाम।

0: और जी हाँ सामिन, अभी पसंद हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे थे, शायद आपकी शेफील्ड से आपने हमें याद किया, बेहद शुक्रिया आपका। और अब आज के इस प्रोग्राम का इस हिस्से का आखिरी गीत आप सुनने वालों के नाम करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद होगी आप सुनने वालों से मुलाकात। लाइव कॉल्स में जरूर तशरीफ लाइएगा, नंबर मिलाइएगा 01274306677।
1: जब तक वो अपना चौन
2: वो अपना चौन

0: Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 अरुली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
7: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
7: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
11: and online.
12: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: और समीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदीद कहते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। और सामिन ये वक्त है कि जब हम आप सुनने वालों की लाइव कॉल्स लेते हैं, जिसमें आप तशरीफ लाते हैं, अशआर सुनाते हैं, गीत गाते हैं और इस महफिल को चार चांद लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे बहुत ही मुअज्जज सामे जनाब शकील साहब लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शकील साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी जी जी, आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल सही आ रही है। आपको हमारी आवाज़ आ रही है मोहतरम?
1: आपकी आवाज़ आ रही है
0: जी जी, और आपकी मुझे भी आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है सिस्टम ठीक है। जी जी, खुश आमदीद, वेलकम।
1: ठीक है, तमाम सुनने वालों को बेहतर से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी मैं खालिद अली मीर साहब है, अली भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, चौधरी
0: जी जी
1: फरियाद साहब, महबूब लाई हैं, सादिया बहन है।
0: आपको आवाज आ रही है उधर?
1: जी
0: बताइएगा।
1: सबको अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: सारी को गले का हो गया इस बार,
0: कहते ना कि नवंबर जब भी आता है यही अंजाम होता है, कभी खांसी, कभी नजला, कभी जुकाम होता है,
1: गला गला खराब हो
0: गया। अच्छा अच्छा, चलिए गले से हम गिला नहीं करते,
1: मैं फिर फोन करूंगा।
0: चलिए चलिए, अगर आपकी तबीयत नासाज है तो बहुत शुक्रिया, आपकी हाजिरी होगी, बहुत शुक्रिया। नवाजिश नवाजिश जी। शकील साहब तशरीफ तो लाए थे लेकिन उनका गला उनका साथ नहीं दे रहा, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे जो टिक टाक पे इस वक्त हमारे साथ हैं उन सभी के गले बिल्कुल सही हैं। बताइएगा आपके गले सभी के ठीक हैं? आ जाइएगा, क्योंकि शकील साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। शकील साहब की लाइन, क्योंकि उन्हें बहुत खांसी और नज़ला था तो वो बात नहीं कर पाए, तो कहते हैं कि मैं फिर आऊँगा, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। आपको शकील साहब की आवाज़ आ रही थी?
2: बिल्कुल आ रही थी।
0: परफेक्ट हो गया, इसका मतलब है हमने वो मसला भी हल कर लिया। अच्छा, तो फिर आप इससे स्टार्ट कर लेते हैं, आप शायरी सुनाइए। एक सेकंड ठहर जाइए, मैं एक माइक पास ले आऊं ताकि आपकी आवाज परफेक्ट अंदाज में आए। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, आप लाइन पे ही रहें, मैं इतने में थोड़ा सा बैकग्राउंड ऊपर कर देता हूं।

और सामिन, आप यूं करते हैं कि अपने हमारे जो भी साथी हैं इस वक्त हमारे साथ टिक टाक के जरिए आज की इस महफिल का हिस्सा हैं, उन सभी को भी हम खुश आमदीद कहते हैं।

0: और सामिन, अब यूं करते हैं कि अपने लाइव कॉलर्स जो इस वक्त टिकटॉक पे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी हम साथ लेके इस सफर में आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं सुंदस, खुश आमदेद आपको कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और मेरा शकील भाई को बहुत बहुत सलाम, फरियाद भाई को सलाम, और जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको मेरा
0: जी
1: सलाम।
0: जी माइक के थोड़ा सा पास आ जाइए ताकि आवाज में मजीद क्लैरिटी आ जाए।
1: मैं बिल्कुल पास
0: जी
1: हूँ,
0: जी चलिए,
1: अभी
0: ठीक,
1: ठीक आ रही है?
0: परफेक्ट है आप। जी जी और शकील साहब
1: चले
0: की आज आवाज साथ नहीं दे रही थी, उनके गले के
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: इशू
1: अल्लाह
0: था।
1: ताला शकील भाई को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए।
0: आमीन आमीन। जी जी
1: तो फैज अहमद फैज का कलाम है कि आके वाबस्ता है उस हुसन की यादें तुझसे,
0: क्या कहने, बहुत खुश।
1: आके वाबस्ता है उस हुसन की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परीखाना
0: बना
1: बना
0: रखा
1: रखा
0: है, बहुत
1: था,
0: अच्छे बहुत अच्छे,
1: जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने,
0: वाह वाह
1: दहर को दहर का अफसाना बना रखा था।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है,
0: वाह वाह
1: कारवां गुजरे हैं जिनसे इसी रानाई के,
0: वाह वाह
1: जिसकी इन आंखों ने बेसुध इबादत की है।
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने।
1: शुक्रिया शुक्रिया। तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें
0: क्या कहने,
1: उसके मलबूस की अफसुर्द
0: जी, सुनाइए। जी, आवाज आ रही है आपको? हेल जी जी, आपकी लाइन शायद ड्रॉप हो रही है।
1: जी
0: जी
1: जी अभी ठीक है।
0: अब परफेक्ट है। जी, और
1: तूने
0: अशर
1: देखी
0: अशर
1: है
0: भाई भी
1: वो,
0: हमारे साथ आए। आपको पता है अशर आजाद हमारे साथ प्रोग्राम करते थे, खुश
1: जी
0: आमदेद
1: जी
0: कहते हैं। अशर भाई आप भी आइए, जरा ज्वाइन कीजिएगा, हमें आपका इंतजार है। जी आप सुनाइए गजल।
1: अच्छा। तुझ पे बरसा है उसी बाग में महताब का नूर।
0: वाह वाह, अशर आजाद हमारे साथ प्रोग्राम करते थे, खुश
1: जी
0: आमदेद
1: जी
0: कहते हैं। अशर भाई आप भी आइए, जरा ज्वाइन कीजिएगा, हमें आपका इंतजार है। जी आप सुनाइए गजल।
1: अच्छा।

0: गंवा दी हमने,
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: शुक्रिया हम पे मुश्तरका है एहसान गमी उल्फत के,
1: बहुत खूब,
0: इतने एहसान के गिनवाओ तो गिनवा न सकूं।
1: बहुत अच्छे।
0: हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या
1: क्या
0: सीखा है,
1: बहुत अच्छे,
0: जो तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं।
1: बहुत खूब,
0: आजजी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी,
1: बहुत अच्छे,
0: या सोहरमान के दुख दर्द के माने सीखे,
1: बहुत अच्छे।
0: जेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा,
1: वाह
0: सत
1: वाह,
0: आहों के रुखे जद के मानी सीखे,
1: बहुत अच्छे,
0: जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके
1: वाह वाह,
0: अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: थैंक यू। नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब,
1: वाह वाह,
0: बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं,
1: बहुत
0: जब
1: अच्छे।
0: कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त,
1: आहा,
0: शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: आग सी सीने में रह रह के उबलती है ना पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है,
1: आहा,
0: आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे
1: या वाह वाह,
0: जिसने इस दिल को
1: परीखाना
0: परिहाना
1: बना
0: बना
1: रखा,
0: रखा था।
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: थैंक
1: अच्छे।
0: यू सो मच। अगर आप कहते हैं तो मैं एक और सुना देती हूँ, वरना अगली किसी और से सुनती
1: आप
0: हूँ।
1: एक और सुना दीजिए जल्दी से। सही,
0: चले तेरा जिक्र आज भी दिल के किसी गोशे में रहता है,
1: वाह वाह,
0: तेरा जिक्र आज भी दिल के किसी गोशे में रहता है, जैसे बंद किताब में कोई सूखा हुआ गुलाब रहता है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: हमने तो कब का छोड़ दिया था तेरा इंतजार, मगर न जाने क्यों हर दस्तक पर तेरा ख्याल रहता है,
1: बहुत खूब, बहुत।
0: ना वो लौटने का वादा ना हमें उम्मीदें विसाल, फिर भी दिल को किस बात का ये मलाल रहता है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: हमने तो इश्क को तकदीर का लिखा समझ लिया, मगर हर दुआ में तेरा ही एक सवाल रहता है,
1: बहुत अच्छे,
0: ये भी क्या सितम है कि भूलने की हर कोशिश के बाद नाम तेरा ही लबों पर बेख्तियार रहता
1: रहता है,
0: है।
1: बहुत अच्छे।
0: गालिब इश्क से किसने कब निजात पाई है, दिल तो जल ही जाता है बस राह का ख्याल रहता है, तेरा जिक्र आज भी दिल के किसी गोशे में रहता है,
1: बहुत खूब,
0: जैसे बंद किताब में कोई सूखा हुआ गुलाब
1: गुलाब
0: रहता
1: रहता।
0: है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो
1: बहुत
0: मच।
1: शुक्रिया, लाइन पे ही रहिएगा। और अब हीर, आप पहले आना चाहती हैं या एएम के? आपकी मर्जी, आप दोनों फैसला कर लीजिए।
0: नहीं, एएम के पहले आई थी, सोलन उन्हीं की बारी
1: जी
0: पड़ती है,
1: चलिए
0: मैं
1: एम के,
0: पहले
1: आप आ
0: आई
1: जाइए अब।
0: जी। बहुत शुक्रिया।
1: जी, खुश आमदेद कहते हैं आपको भी, क्योंकि सुनने वाले इस वक्त लाइव जो रेडियो पे सुन रहे हैं उनके लिए आप इस वक्त ही आ रही हैं। हालांकि आप हमारे साथ खासी देर से हैं, तो सभी सुनने वालों
0: जी
1: को वो बता दें कि आप मलेशिया से माशाल्लाह तशरीफ ला रही हैं और बड़ी एले ज़ौक सामे हैं हमारी। खुश आमदेद कहते हैं, सुनाइएगा आज के इस प्रोग्राम में आप क्या सुनाना पसंद करेंगी।
0: जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: सबको,
1: अस्सलाम। जी
0: मैं आपको सागर निजामी की एक गजल
1: जी जी
0: सुनाती हूँ।
1: सागर निजामी जी, इनायत
0: दश्त
1: कीजिए।
0: में कैस नहीं कोह पे फरहाद नहीं,
1: वाह वाह,
0: दश्त में कैस नहीं कोह पे फरहाद नहीं, है वही इश्क की दुनिया मगर आबाद
1: आबाद
0: नहीं,
1: नहीं। बहुत खूब,
0: रस्म उल्फत में रवा शिकवाए बेदाद नहीं,
1: आहा,
0: रस्म उल्फत में रवा शिकवाए बेदाद नहीं, ये तो कमज़र्फ़ी जज्बात है पर याद नहीं,
1: बहुत खूब।
0: वो मेरी खाक नशीनी के मज़े क्या जाने,
1: वो मेरी
0: वो
1: खाक
0: मेरी
1: नशीनी के
0: खाक
1: मजे क्या
0: नशीनी
1: जाने।
0: के मज़े क्या जाने, जो मेरी तरह तेरी राह में बर्बाद नहीं,
1: बहुत खूब, बहुत खूब,
0: ढूंढने को तुझे और मेरे ना मिलने वाले,
1: वाह वाह,
0: ढूंढने को तुझे और मेरे ना मिलने वाले, वो चला है जिसे अपना भी पता याद
1: याद
0: नहीं,
1: नहीं। बहुत खूब।
0: एक जंजीरे तरीकत में बंधे हैं दोनों, एक जंजीरे तरीकत में बंधे हैं दोनों, इश्क पाबंद सही हुस्न भी आजाद नहीं,
1: बहुत अच्छे।
0: अर्श वाले ना सुने सारी

0: खुदाई सुन ले।
1: बहुत अच्छे।
0: अर्श वाले ना सुने सारी खुदाई सुन ले, इस कदर पस्त मजाक लबे फरियाद नहीं।
1: बहुत।
0: रूहे बुलबुल ने खजा बन के उजाड़ा गुलशन। रूहे बुलबुल ने खजा बन के
1: उजाड़ा गुलशन।
0: फूल कहते रहे हम फूल हैं
1: सैयाद नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब।
0: हुसन से चूक हुई उसकी है तारीख गवाह। हुसन से चूक हुई
1: उसकी है तारीख गवाह।
0: इश्क से भूल हुई हो ये मुझे याद।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: बेरब्ते माह पे मिजराबे फुगा रख दी थी। बेरब्ते माह पे मिजराबे फुगा रख दी थी। मैंने एक नगमा सुनाया था तुम्हें याद।
1: तुम्हें याद नहीं। बहुत खूब।
0: कफसो बुलबुलो गुल सब है ये फानू से ख्याल। कफसो बुलबुलो गुल सब है ये फानू से ख्याल। तेरी हस्ती से ज्यादा कोई सयाद
1: नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब।
0: खोल कामों से मोहब्बत वर के इश्क उलट। खोल कामों से मोहब्बत वर के इश्क उलट। हुस्न को माने यक लफ से वफा याद नहीं।
1: बहुत खूब।
0: लाओ एक सिजदा करूं आलमे बदमस्ती में। लाओ एक सिजदा करूं आलमे
1: बदमस्ती में।
0: लोग कहते हैं कि
1: सागर को
0: खुदा
1: याद नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और इसमें आपने बहुत अच्छा एक तरह से यूं कह लीजिए कि इश्क व अक्ल का एक मुआजना भी इसमें शामिल था। तो मुझे इकबाल का वो शेर अक्सर याद आ जाता है कि अक्ल अय्यार है सो बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा ना काजी है ना मुल्ला ना हकीम। क्या ख्याल है? जी जी
0: बहुत
1: जी जी। तो अब यूं करते हैं कि हीर को मौका देते हैं और उसके बाद फिर इस अगले दौरानिये में एक गजल आपसे और भी सुनेंगे। रुखसार अहमद खुश आमदेद कहते हैं, आप भी इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको इनविटेशन हमने सेंड कर दिया है, तशरीफ लाइएगा। और यूं करते हैं कि अगर पहले हीर आप सुनाइए और आपके बाद हम रुखसार चौधरी साहब यकीनन मैनचेस्टर से हमारे साथ मौजूद हैं, रुखसार अहमद साहब, उन्हें भी हम साथ में शामिल कर लेंगे। तो अभी हीर आप सुनाइए।
2: नहीं, अगर आप उनको लेना चाहते हो आप पहले।
1: नहीं, पहले आप आ जाइए, पहले आप आ जाइए।
2: चलो ठीक है,
1: इनायत कीजिए।
2: मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
2: जी। कहते हैं कि ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई।
1: ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। वाह।
2: कहते हैं कि ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज आज फिर याद मोहब्बत की
1: कहानी आई। बहुत खूब, बहुत खूब।
2: आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा।
1: आज फिर नींद को आंखों से,
2: आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा। आज आज फिर याद कोई चोट
1: पुरानी आई। बहुत खूब।
2: मुद्दों बात चला इन पर हमारा जादू।
1: मुद्दों बात चला उन पे,
2: मुद्दों बात चला इन पर हमारा जादू। मुद्दों बात हमें बात
1: बनानी आई। बहुत खूब।
2: मुद्दों हुआ पशिमा दरिया हमसे। मुद्दों हुआ पशिमा दरिया हमसे। मुद्दों बाद हमें प्यास छुपानी
1: आई। तशनगी मौज के होंठों पे मचलती देखी। तशनगी मौज के होंठों पे मचलती देखी हम जो साहिल पे कभी प्यास बुझाने निकले।
2: अरे वाह, क्या कह रहे हैं। बहुत खूब जी। कहते हैं कि मुद्दों बात खुली वुसते सहरा हम पर।
1: वाह।
2: मुद्दों बात खुली वुसते सहरा हम पर। मुद्दों बात हमें खाक
1: उड़ानी आई। आहा, क्या कहने।
2: मुद्दों बात मुयसर हुआ माँ का आंचल।
1: आहा।
2: मुद्दों बात मुयसर हुआ माँ का आंचल। मुद्दों बात हमें नींद
1: सुहानी आई। बहुत खूब।
2: आखिरी दो लाइनें हैं। कहते हैं कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत।
1: इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत।
2: से मिलती नहीं फन की दौलत। ढल गई उम्र तो गजलों पे रवानी आई।
1: सही, बहुत खूबसूरत, बहुत क्या ही खूबसूरत
2: चेहरे
1: जी जी। और रुखसार चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपको भी हम इनविटेशन आपको भी भेज दिया है, अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो आ जाइए, आपसे भी बात हो जाती है। और जी हाँ, दीगर भी सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आप हमें टिक टाक पे देख रहे हैं तो डबल टैप कीजिएगा ताकि आपके आपको भी आज के इस प्रोग्राम का हम हिस्सा बना सकें। और अभी मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही मिनट रहता है, यूं है कि अभी कोई मुसलसल गजल तो हम किसी भी सुनने वाले से नहीं सुन सकेंगे, अगर कोई एक रात शेर किसी ने सुनाना है तो सुनाइए, आप में से कोई भी कोई एक शेर सुनाना चाहे, जिस आप तीनों में से जो हमारे साथ हैं इस वक्त, कोई भी एक शेर अगर किसी के जहन में आ रहा है तो सुनाइए।
2: कहते हैं कि अगर आप में से कोई अगर सुनाना चाहे तो जरूर सुंदर साफ हो जाए या एम के, अगर आप दोनों में से कोई सुनाना चाहे
0: आप सुनाइए प्लीज।
1: जी जी।
2: चल कहते हैं कि अब तो ख्वाहिश है कि ये जख्म भी खा कर देखे, अब तो ख्वाहिश है कि
1: ये जख्म भी खा कर देखे,
2: लम्हा भर को ही सही, लम्हा भर को ही सही उसको
1: भुला कर देखें। बहुत खूब, बहुत खूब।
2: शहर में जश्न शब कदर की साथ आई, शहर में जश्न शब कदर की साथ आई, आज हम भी तेरे मिलने की दुआ कर देखें।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, क्या कहने, जबरदस्त है, जबरदस्त है।
2: आंधियों से जो उलझने की कसक रखते हैं, आंधियों से जो उलझने की कसक रखते हैं, एक दिया तेज हुआ हवा में भी जला कर देखें।
1: और बस अभी इसी के साथ ही ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हम चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जरूर तशरीफ लाइएगा टिकटॉक पे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं या अगर आप लाइव कॉल करना चाहें तो भी हम आपको मौका देंगे। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677 और हमारा व्हाट्सएप है 00447 800 599 563 00447 800 599 563। चलते हैं ब्रेक की जानिब।
3: कम्युनिटी रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
8: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
9: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
8: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
9: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
8: फर्स्ट चॉइस
9: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
9: 01274317644।
10: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड BD8 ATY।
9: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज.uk। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
11: आपकी शान
9: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER, 01274-491-442,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
9: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
9: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए,
9: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
11: 01274-201679, UK।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
12: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 days, पल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274.

और सामिन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सुनने वालों को खुश आमदीद दे कहते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर, और ये हमारी नशात आप सुन रहे हैं रंगी महफिल प्रोग्राम। तो अब यूं करते हैं कि एएम के इस वक्त आप कुछ सुनाना चाह रही हैं तो आपको एक बार फिर हम मौका देते हैं, और साथ में अगर स्टूडियो के नंबर पे भी आप कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274-30-6677, ब्रेडफोर्ड 01274-30-6677 आप कॉल कर सकते हैं। और गालबन हमारे कुछ समय हैं, हम इन्हें पहले देख लेते हैं और फिर एएम के आपसे बात होती है।

0: जी अस्सलाम वालेकुम रुखसार साहब जनाब।
1: जी अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। चश्मे रोशन दिले माशा बा कमाल बहुत आला बा इज्जत बाबकार बाजुक बाजुक हर दिल जी शख्सियत जनाब मोहतरम पीर सैयद हसन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
0: वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, खुश आमदे दिल किया था गहराइयों से।
1: हजूर कैसे हैं आप?
0: अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है, आप सुनाइए खैरियत से ठीक है?
1: माशाल्लाह जी आपकी दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक।
0: और आपने हमें शायद टिकटॉक पे भी ज्वाइन कर रखा है साथ साथ।
1: जी सॉरी मुझे आपकी
0: आपने टिकटॉक पे भी हमें ज्वाइन कर रखा है शायद।
1: जी मैंने ज्वाइन किया था, बस मैंने बोला आपकी सिर्फ फकत मकसद आपकी ज्यारत का था, मैंने आपकी ज्यारत कर ली तो माशाल्लाह समझ लो कि मेरा मकसद पूरा हो गया।
0: अल्लाह पाक सलामत रखे,
1: यकीन करें आपका माशाल्लाह इतना नूरानी चेहरा माशाल्लाह क्या खूबसूरत, वो कहते हैं ना कमा यार सैयद सैयद ही होते हैं, यकीन करें आपकी ज्यारत होगी तो मुझे बहुत दिल की बहुत खुशी मिली है मुझे, यकीन करें।
0: बहुत सलामत रहे, खुश है, बहुत सी दुआएं आपके लिए।
1: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपके पूरे परिवार को, संगत साथ को, अहले याल को, आपके साथ जिसका भी किसी लिहाज से कोई रिश्ता है अल्लाह ताला सभी को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी बहुत सी दुआएं आपके चैनल के साथ, आपके पूरे परिवार के साथ, आपकी पूरी टीम के और आपके माशाल्लाह इतने खूबसूरत जो लिसनर हैं सभी के लिए बहुत सी दुआएं हैं।
0: बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी हमारी जानिब से बहुत सी दुआएं, अल्लाह पाक आपको भी इससे दुआ।
1: मैं तो मुताज दुआ हूँ, यकीन करें कि मैं इस मामले में मैं खुद बड़ा गरीबी हूँ।
0: जी अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे।
1: अल्लाह आमीन आपकी दुआओं का मुताज हूँ, तो मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। माशाल्लाह टिकटॉक पे भी माशाल्लाह क्या खूबसूरत महफिल सजाई हुई आपने,
0: बहुत शुक्रिया। ये आप सुनने वालों ने हमें घसीट के यहाँ लाया है, नहीं तो हमारा इरादा नहीं था।
1: सलामत रखे, इसी देख ले ना मैंने कभी आपकी ज्यारत नहीं की तो इसी बहाने आपकी ज्यारत का शरफ ही हासिल हो जाता है। ख्याल है जी, ये बड़ा मैं ब्रैडफोर्ड जानने की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: वो किसी के शेर भी है ना ऐसे ही कि माँ जबीनू की जुबान से कलाम सुन के मेरा, माँ जबीनू की जुबान से कलाम सुन के मेरा बहुत से लोग मेरी शक्ल देखने आए।
1: क्या कहने माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। तो सब मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूंगा हमारे पीर और सैयद मुर्शिद सैयद राब बैदर साहब को, साहब को बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और जनाब मोहतरम मुश्किल साहब आए थे, मैं उनको सुन रहा था माशाल्लाह, चलो उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी साफ फरमाए, क्योंकि मौसम ऐसा है ना कच्चा पक्का मौसम है तो हो जाता है ये, बस गले का हो गया, नजला का काम, फ्लू हो गया, तो अल्लाह ताला सभी को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सभी को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी साफ फरमाए। जनाब महबूब लाई साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, राणा नसीर साहब हैं, चौधरी फरियाज साहब हैं, सभी को जिनको मैं क्योंकि फर्दन फर्दन तो आपके माशाल्लाह के नाम नहीं मैं जानता, जो मुझे मैं हकीर को सुन रहे हैं ठीक है, सभी को जनाब मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा, चाहतों भरा, उल्फत भरा, अकीदत भरा, नहायत अदब एहतराम से बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: तो एक मैं छोटी सी पोएट्री लेके आया हूँ
0: जी जी,
1: और माशाल्लाह इतने अच्छे पोएट और माशाल्लाह इतने खूबसूरत, वो कहते हैं ना कि गजल कहने वाली हस्तियां हैं, वो कहते हैं मैं क्या सुनाऊं उनको, क्या
0: बड़ी अच्छी महफिल लगा रही हैं हमारी तीन साथी हैं, सादिया को तो आप जानते ही हैं, सुंदस को, और फिर एएम के बहुत ही अच्छा मलेशिया से तशरीफ लाती हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज और अंदाज है और इंतखाब है, इसी तरह हीर हैं फ्रांस से तशरीफ लाती हैं और एक महफिल को चार चांद लगा देती हैं, हम इन तीनों का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ही खूब निभाती हैं। और आज हमारे साथ एक और थे हसन साहब थे गालबन लाहौर से, बहुत अच्छा कलाम सुना रहे थे लेकिन जब ऑन द एयर की बारी आई तो गालबन कहीं उन्हें मसरूफियत पड़ गई, वो तशरीफ नहीं ला पाए।
1: नहीं माशाल्लाह वाकई सही कहते हैं कि ये आपका गुलदस्ता है कि इस तरह के इसमें जो है ना हर तरह के फूल हैं माशाल्लाह, और हर फूल की एक अलहदा और मुनफरिद खुशबू है, यकीन करें
0: जी जी, जी इंशाल्लाह।
1: तो मैं जनाब जस है
0: जी जी इनायत कीजिए कुछ सुनाइए,
1: सबक सुनाने के लिए मैं आया हूँ,
0: इनायत कीजिए।
1: शायर लिखता है दिल की बस्ती में बसा का तुझे वीरान हुए,
0: आहा
1: हम तेरी चाह में रुसवा सरे मैदान हुए।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: थैंक यू सर। जुल्फ बिखराई तो सूरज के दिए बुझने लगे,
0: आहा
1: चांद रोशन हुआ मंजर सभी हैरान हुए।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे,
1: बहुत शुक्रिया। अक्स फैला जो तेरा आईना हैरत में रहा,
0: आहा
1: हुस्न के देख जलवे वो पशमान हुए।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या
1: शुक्रिया। कितने चेहरे थे जो चेहरे पे सजाए तूने,
0: कितने चेहरे थे जो चेहरे पे सजाए तूने,
1: तेरे जाने से कई जख्म परेशान हुए।
0: बहुत खूब बहुत खूब
1: शुक्रिया। गम का सहरा था मगर याद की शबनम बरसी,
0: आहा
1: कतरे पलकों पे चमकते हुए मरजान हुए,
0: मरजान हुए। बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर, तेरे कूचे से गुजर कर यही जाना है अनीस, इश्क के शहर में अब हम ही निगेबान हुए।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहें।
1: शाह साहब, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और आपकी पूरी टीम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं और इस उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि आप भी मुझे अपनी नेक दुआ में याद रखें।
0: अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे, हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके कारोबार में, काम काज में खैर बरकत दे। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे। बहुत सी दुआओं के साथ इंशाल्लाह आपको अलविदा कहते हैं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में रहती है आपसे मुलाकात।
1: बेहद शुक्रिया सर,
0: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और जी हाँ सामीन, अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे जनाब रुखसार चौधरी साहब, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा बड़ी दुआओं से, बड़े इज्जत और एहतराम से नवाजते हैं, जिसके लिए हमारे पास अल्फाज भी नहीं होते। अल्लाह पाक इन्हें भी इतनी इज्जतें दे जितनी ये जिनसे हमें ये नवाजते हैं। तो आप हमारे साथ हैं, आप में से जो भी कोई कलाम सुनाना चाहें तो आ जाइए, माइक खुली है आपके सामने, तो सुनाइए आप दोनों में से जो भी सुनाना चाहें।
2: जी
0: जी जी, इनायत कीजिए।
2: कभी कभी खुद से मिलने को दिल करता है,
0: वाह वाह।
2: कभी कभी खुद से मिलने को दिल करता है, क्या माजरा क्या उलझन है पूछने को दिल करता है।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: वो शख्स जो मेरे अंदर कहीं अभी जिंदा है, वो शख्स जो मेरे अंदर कहीं अभी जिंदा है, उसी के सामने एक बार बैठने को दिल करता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: तमाम उम्र जिसे दूसरों में ढूंढते रहे,
0: तमाम उम्र जिसे दूसरों में ढूंढते रहे,
2: दूसरों में ढूंढते रहे, वो अक्सर खुद ही खुद में देखने को दिल करता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: ये दिल भी कितना अजीब शह है ए दोस्त,
0: आहा।
2: ये दिल भी कितना अजीब शह है ए दोस्त, टूट जाए तो फिर और टूटने को दिल करता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: न जाने कौन सी वहशत है मेरे अंदर की,
0: आहा।
2: न जाने कौन सी वहशत है मेरे अंदर की, अंदर की कि हंसते हंसते अचानक रोने को दिल करता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: जो बात कह न सके हम तमाम उम्र से,
0: जो बात कह न सके हम तमाम उम्र से,
2: हम तमाम उम्र से किसी खामोश नजर से कहने को दिल करता।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: बहुत करीब है मंजिल मगर ये क्या कम है,
0: आहा।
2: बहुत करीब है मंजिल मगर ये क्या कम है कि अब कहीं रुक के सोचने को दिल करता है।
0: बहुत खूब।
2: ये जिंदगी भी अजब कर्ज है कि हर लम्हा,
0: आहा।
2: ये जिंदगी भी अजब कर्ज है कि हर लम्हा किसी गुजरे हुए लम्हे का होने को दिल करता है।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: हम अपने आप से आखिर कहाँ तलक भागे,
0: हम अपने आप से आखिर कहाँ तलक भागे,
2: हम अपने आप से आखिर कहाँ तलक भागे, अब अपने गिरेबा में झांकने को दिल करता है।
0: बहुत खूब
2: जी, बहुत शुक्रिया
0: जी। जी, और सुंदर सा, अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो आप माइक खुलिए।
3: जी सर,
0: जी जी।
3: ये है सैयद फरहत अबाशा,
0: फरहत अबाशा की। जी जी।
3: देख लेना कि किसी दुख की कहानी तो नहीं,
0: हाँ, देख लेना कि किसी दुख की कहानी तो नहीं,
3: किसी दुख की कहानी तो नहीं, ये जो आंसू हैं कहीं उसकी निशानी तो नहीं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने सुंदर, क्या कहने।
3: दिख रही है जो मुझे साफ तेरी आंखों में,
0: दिख रही है जो मुझे साफ,
3: ये बात कहीं मुझसे
0: छुपानी तो नहीं। बहुत अच्छे, ये शेर फिर से पढ़िएगा, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: दिख रही है जो मुझे साफ तेरी आंखों में, तूने ये बात कहीं मुझसे छुपानी तो नहीं,
0: क्या कहने।
3: जानता हूँ के शराबों में घिरा हूँ यारों,
0: जानता हूँ कि शराबों में घिरा हूँ यारों,
3: जानता हूँ कि शराबों में घिरा हूँ यारों, दौड़ पड़ता हूँ मगर फिर भी के पानी तो नहीं।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फरहत अब्बास क्या लिखते हैं, क्या कहने, वाह वाह।
3: जिस तरह शहर से निकला हूँ मैं बीमार तेरा, ये उजड़ना है कोई नकल
0: मकानी तो नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब।
3: ये जो हर मोड़ पे आ मिलती है मुझसे फरहत, ये जो हर मोड़ पे आ मिलती है मुझसे फरहर, बदनसीबी भी कहीं मेरी दीवानी तो नहीं,
0: बहुत
3: बदनसीबी भी
0: कहीं
3: कहीं
0: मेरी
3: मेरी
0: दीवानी
3: दीवानी
0: तो
3: तो
0: नहीं।
3: नहीं, देख लेना कि किसी दुख की कहानी तो नहीं, ये जो आंसू है कहीं उसकी निशानी
0: निशानी
3: तो
0: तो नहीं।
3: नहीं,
0: मुझे फरहत
3: कहीं
0: अब्बास की वो
3: उसकी
0: गजल
3: निशानी
0: बहुत,
3: तो नहीं।
0: वो गजल उनकी जो उनकी वजह शोहरत बनी थी कि तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है
3: हाँ
0: सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम
3: उतर
0: के बाद और लौट
3: बहुत
0: आती
3: उतर।
0: है। यहाँ जब वो ब्रेडफोर्ड आए थे कि चंद साल पहले, तो उन्होंने इस गजल में इजाफत की थी, एक नया शेर उन्होंने ऐड किया था कि लौट आती है मेरे शब की इबादत खाली, लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली, जाने किस अर्श पे रहता है खुदा शाम के बाद। लौट
3: क्या
0: आती है
3: कहना
0: मेरी
3: है,
0: शब
3: बहुत
0: की इबादत खाली, जाने किस अर्श पे रहता है खुदा शाम के बाद।
3: बहुत हो।
0: और हमारे सामने ने कुछ लिखा है, आप पढ़ दीजिए अगर आप के पास है फोन तो। सुंदर साहब पढ़ दीजिए या एम के आप पढ़ दीजिए।
3: जी, उसने चाहा मुझे उस खुदा से, अपने खुदा
0: बढ़कर
3: से बढ़कर,
0: बढ़कर जी,
3: मैंने ये बात जमाने को
0: को
3: बता
0: बतानी
3: दी
0: तो
3: है।
0: नहीं, क्या कहने, वाह वाह, कौन है हमारे ये, यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही।
3: जी, रंगरेज ने
0: जी
3: बताया है।
0: जी जी बहुत खूब, बहुत अच्छे मोहतरम, बहुत अच्छा शेर आपने आपका था
3: सैयद जुड़े हैं हमारे साथ।
0: जी। और सैयद साहब आप भी हमारे साथ हैं, जरा सुनाइएगा, क्या सुनाएंगे आप जी सैयद।
4: वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम
3: अस्सलाम,
0: मोहतरम,
4: ठीक हो?
0: अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए, खैरियत ठीक ठाक। कौन भाई, कहाँ से?
4: प्याज नकवी ब्रांडफोर्ड से। प्याज
0: जी
4: नकवी ब्रांडफोर्ड
0: जी जी
4: से।
0: जी फियाज भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है मोहतरम
4: अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक।
0: जी। कुछ सुनाइए कुछ शेर, एक आध
4: शेर तक वही याद जबानी अभी।
0: जी, जुबानी नहीं है। चलिए फिर आप हमारे शेर सुनिए, फिर हम आपको यूं करते हैं, एक कथा आपको फैज अहमद फैज का मैं सुनाता हूँ, सही आपके नाम है, ठीक है, आपको मैं शायरी सुनाता हूँ तो आप आराम से सुनिए। और बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं, आप हमारी महफिल में तशरीफ लाए। एक फैज़ अहमद फैज का एक खूबसूरत कथा है, वो इनके नाम, उसकी फिर साथ में पैरोडी भी सुनाते हैं इनको। बहुत ही खूबसूरत वो कथा था, फैज़ अहमद फैज की जो किताब है मजमूए कलाम, उसका पहला आया सबसे पहले, कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, और जैसे वीराने में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। तो इसकी किसी दोस्त ने फिर गालबन पैरोडी भी बनाई थी कि बेनियाजी से ये सब फजलो करम होते हैं, बेनियाजी से ये सब फजलो करम होते हैं, क्या खबर कल को मेरे पास भी कार आ जाए, और यूं लगे हाथ मेरे दौलत व मताए रिश्वत, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। आप लाइन पे हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी कोई मोहतरम सुनने वाले हैं, तो यूं करते हैं कि हम उनसे भी बात कर लेते हैं।

0: और सामिन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ इकबाल भाई ब्रेडफोर्ड से मौजूद हैं। इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। ये अक्सर कोई ना कोई अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुनाते हैं और हम सभी को हंसाते हैं। जी इकबाल भाई, आपको आवाज आ रही है?
1: आज शाम को आवाज आ रही, पता नहीं सुबह को क्यों नहीं आवाज आती।
0: हाँ जी जी जी जी जी तो आप ऑन द एयर हैं, आपको हमारे सभी सुनने वाले सुन रहे हैं, तो आप यूं कीजिए कि कोई एक छोटा सा डायलॉग सुना दीजिए आज के इस प्रोग्राम में।
1: चलो एक लाइन का जो आपको सुना देता हूँ मैं, वो जैसे आपने कहा एक शेर सुना दें। वो कहते हैं, मत कीजिए गरूर इन हाथों की लकीरों पर,
0: हाँ
1: मत कीजिए गरूर इन हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते।
0: बहुत खूब बहुत खूब
1: तो ये एक मूवी कभी कभी का ये डायलॉग है, ये नज़म कह लें या
0: जी
1: कविता कह
0: जी
1: लें,
0: सुनाइए
1: तो मैं आपको सुनाता हूँ।
0: जी।
1: तो अमित जी कहते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है,
0: हाँ
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की
0: नरम
1: नरम
0: छाओं
1: छाओं
0: में
1: में
0: गुजरने
1: गुजरने
0: पाती
1: पाती तो
0: तो
1: शादाब
0: शादाब हो
1: हो भी
0: भी सकती
1: सकती
0: थी,
1: थी।
0: क्या कहने। हाँ
1: ये रंजो गम की स्याही जो दिल पर छाई है,
0: हाँ
1: तेरी नजर की छुआओं में खो भी सकती
0: खो भी
1: थी,
0: सकती थी, वाह वाह।
1: मगर ये हो न सका। अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं।
0: वाह वाह,
1: गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी, जैसे इसे किसी के सहारे
0: सहारे
1: की
0: की
1: आरजू भी
0: आंसू भी
1: नहीं।
0: नहीं।
1: ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग,
0: हाँ
1: भटक रही है
0: अंधेरों
1: अंधेरों
0: में
1: में
0: जिंदगी
1: जिंदगी
0: में
1: मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह
0: रह जाऊंगा
1: जाऊंगा
0: कहीं
1: कभी
0: खोकर,
1: खोकर,
0: मैं
1: मैं
0: जानता हूँ
1: जानता हूं मेरी हमनफस, मगर
0: मगर
1: यूं
0: यूं
1: ही
0: कभी
1: कभी
0: कभी
1: कभी
0: मेरे
1: मेरे
0: दिल
1: दिल
0: में
1: में
0: ख्याल
1: ख्याल
0: आता
1: आता
0: है।
1: है,
0: बहुत
1: कभी
0: शुक्रिया
1: कभी
0: इकबाल
1: मेरे
0: भाई,
1: दिल में
0: बहुत शुक्रिया,
1: ख्याल
0: सलामत
1: आता
0: रहें।
1: है।
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और जी सामीन, अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ शायरी सुना रहे थे इकबाल भाई अभी D5 से, बेहद शुक्रिया इनका अदा करते हैं। और हमारे पास हैं तकरीबन 7-8 मिनट्स हैं, अगर आप में से कोई भी सुनने वाला आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होना चाहे तो आप तशरीफ ला सकते हैं। अभी हमारे साथ TikTok पे हमारे कुछ साथी मौजूद हैं, इन्हें खुश आमदेद कहते हैं और देखते हैं कि अगर ये भी कुछ सुनाना चाहें तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ आइला या कुछ ऐसा नाम है जी, आप अगर कुछ सुनाना चाहें और रंग्स आप भी अगर लाइव आना चाहें तो प्लीज़ आप आ जाइए। इतने अच्छे अच्छे अशआर आप वहाँ लिख रहे हैं, हम खुद पढ़ेंगे तो हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप अपनी आवाज़ में आके हमें सुना दें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तशरीफ़ ले आइए, आप सभी
1: जी
0: जानते हैं कि महफिल इस वक्त रवान दवा है, आप भी तशरीफ़ ले आइए ताकि आपकी शायरी भी हम सुन सकें। आप जो इस वक्त हमारे साथ हैं, आप में से कोई भी कोई शायरी सुनाना चाहें तो आप सुनाइए, हमारे पास टाइम
1: जी
0: मुख्तसर
1: मैं
0: सा ही है।
1: नासरा जुबैरी की एक गजल सुनाती हूँ।
0: जी जी नासरा जुबैरी की गजल सुनाइए। जी जी
1: हम के दिन भर की जरूरत में लगे रहते हैं,
0: हम के दिन भर
1: हम
0: के
1: के
0: जरूरत में
1: दिन भर
0: लगे
1: की
0: रहते हैं,
1: जरूरत में लगे रहते हैं, हो ना पूरी तो शिकायत में लगे
0: लगे
1: रहते
0: रहते
1: हैं।
0: हैं, बहुत अच्छी गजल है, वाह वाह।
1: खर्च करते हैं जवानी की कमाई में सभी,
0: आहा
1: खर्च करते हैं जवानी को कमाई में सभी, आखिरी उम्र वसीयत में लगे रहते हैं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: दिन में तोड़ते रहते हैं कई ख्वाब महल,
0: हाँ
1: दिन में तोड़ते रहते हैं कई ख्वाब महल,
0: हाँ
1: रात भर उनकी मुरम्मत में लगे रहते
0: लगे
1: हैं।
0: रहते हैं, वाह वाह।
1: मुंतजर रहते हैं कर दे कोई हमला हम पर,
0: मुंतजिर रहते हैं, कर दे
1: मुंतजर
0: कोई
1: रहते
0: हमला हम पर,
1: हैं कर दे कोई हमला हम पर, और फिर उसकी मुजम्मत में लगे
0: लगे
1: रहते
0: रहते
1: हैं।
0: हैं, क्या कहने, फिर से सुनाइएगा, वाह वाह।
1: मुंतजर रहते हैं कर दे कोई
0: हमला
1: हमला
0: हम
1: हम
0: पे,
1: पर, और फिर उसकी मुजम्मत में लगे रहते
0: ये
1: हैं।
0: लगता है कि यहां भी कुछ मसला ऐसा ही चल रहा है कि जैसा इस वक्त मशहूर है।
1: इश्क के राग में लग जाएं सभी सुर सच्चे,
0: हाँ
1: इश्क के राग में लग जाएं
0: सभी
1: सभी
0: सुर
1: सुर
0: सच्चे
1: सच्चे, हम इसी सख्त रियाजत में लगे
0: लगे रहते
1: रहते हैं।
0: हैं, बहुत खूब बहुत खूब।
1: हम किसी और के दरबार में थे कुछ पहले,
0: हम किसी और
1: हम
0: के
1: किसी
0: दरबार में थे
1: और
0: कुछ
1: के
0: पहले,
1: दरबार में थे कुछ पहले, अब किसी और की खिदमत में लगे
0: लगे रहते
1: रहते
0: हैं, हमारा काम ही यही है, वाह वाह बहुत खूब,
1: हैं। करके आबाद जमीन गम की निकल पड़ते हैं,
0: वाह वाह।
1: करके आबाद जमीन
0: जमीन
1: गम की
0: निकल
1: निकल
0: पड़ते
1: पड़ते
0: हैं,
1: हैं, मुस्तकिल हम नई हिजरत में लगे
0: लगे
1: रहते
0: रहते
1: हैं।
0: हैं, वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह। और अब हमारे साथ
2: हम तो
0: एक
2: बस,
0: जी
2: जी
0: जी
2: लास्ट है ये,
0: जी जी
2: हम तो बस तोलते हैं दिल के बराबर दिल ही,
0: आहा,
2: हम तो बस
0: तोलते
2: तोलते
0: हैं दिल
2: हैं
0: के
2: दिल के बराबर
0: बराबर दिल
2: दिल
0: ही
2: ही, आप दुनिया की तिजारत में
0: लगे
2: लगे
0: रहते हैं। बहुत खूब, बहुत
2: रहो। बहुत
0: खूब,
2: शुक्रिया जी।
0: बहुत शुक्रिया। और आशा जी, आप हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम
3: जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
0: जी, कौन भाई, कहाँ से, बताइएगा, थोड़ा तारुफ करवाइएगा।
3: मैं इस्लामाबाद से।
0: इस्लामाबाद से। जी, तो नाम क्या है आपका?
3: नाम लिखा है मेरा शाह जी आपके
0: अच्छा,
3: पास।
0: चलिए शाह जी हम कह लेते हैं मुख्तार। जी, सही।
3: ये सुंदर साहब की जानती है ना, मुझे मैं आता रहता हूँ।
0: अच्छा, सही सही, फिर ठीक है, फिर ठीक है। जी, तो सुनाइए कुछ, इनायत कीजिए।
3: चलें ठीक है,
0: जी, इनायत कीजिए कुछ।
3: चलें आप बीजीएम के बगैर, वैसे मैं बीजीएम चलाता हूँ, चलें ट्राई करता हूँ बीजीएम।
0: मैं उसके बगैर प्लीज, क्योंकि हमारी कुछ यहाँ दिखते हैं तो वो नहीं कर सकते। जी,
3: ठीक है ठीक। नहीं वैसे मैं अपना प्ले करता हूँ, लेकिन कोशिश करते हैं।
0: जी, सुनाइए कुछ गजल ऐसे ही। जी
3: चले जी, नहीं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी
0: जी,
3: इंशाल्लाह।
0: जरूर।
3: कहता है कि हकीकत देख ले वो जोड़कर तस्वीर के टुकड़े,
0: हाँ,
3: हकीकत देख ले वो जोड़कर तस्वीर के टुकड़े, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं या उनके तीर के टुकड़े।
0: बहुत हो, बहुत हो।
3: दुआ दी थी जालिम थोड़ी देर सब्र करना था, दुआ दी थी जालिम थोड़ी देर सब्र करना था, तेरी आहो पुकार ने कर दिए तासीर के टुकड़े।
0: बहुत खूब।
3: और यही जेबो गरबा थे मेरा सरमाया ले देकर,
0: वाह वाह।
3: और यही जेबो गरबा थे मेरा सरमाया ले देकर, जिन्होंने कर दिए आखिर जागीर के टुकड़े।
0: जागीर के टुकड़े। बहुत खूब, बहुत खूब।
3: वफा का जिक्र भी है बेवफाई की शिकायत में,
0: हाँ,
3: वफा का जिक्र भी है बेवफाई की शिकायत भी, जुदा है एक दूसरे से तेरी तहरीर के टुकड़े।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: असर कम से कम हो इतना सोजे शमे महफिल का,
0: हाँ,
3: जो गुल कतरे हो जाएं वही गुलगिरी के टुकड़े।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने।
3: और मुखातिब है अदू लेकिन निशाना मेरी चाहत, और मुखातिब है अदू लेकिन निशाना मेरी चाहत, इन्हें मैं तीर समझूं या कहूं तकदीर के टुकड़े।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: और वफाओं का महल मैंने जतन करके बनाया था, और वफाओं का महल मैंने जतन करके बनाया था, जुफाओं से उड़ाए तूने इस तामीर के टुकड़े।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: और खजान तक ये कफस है, ये असीरी है, ये पाबंदी है, बाहर आई तो हो जाएंगे खुद जंजीर के
0: जंजीर
3: टुकड़े।
0: के टुकड़े। बहुत खूब, बहुत खूब।
3: और शरारों से मेरी आहो पुकार और फलक से रोशन, और शरारों से मेरी आहो पुकार और फलक से रोशन, ये तारे हैं नालायक शब्बीर के टुकड़े।
0: बहुत अच्छे।
3: मक्ता सुनिएगा,
0: जी,
3: मक्ता सुनिएगा लाइन कैसे मैच की पहली लाइन के साथ, जरा और सुनिएगा।
0: जी,
3: कहता है कि जो खत में मैंने अपनी गमजदा तस्वीर भेजी, जो खत में मैंने अपनी गमजदा तस्वीर भेजी, उड़ाए हैं खत के पुर्जे कर दिए तस्वीर के टुकड़े।
0: बहुत खूब, बहुत
3: उड़ाए हैं खत के पुर्जे कर दिए तस्वीर के टुकड़े,
0: बहुत अच्छा।
3: हकीकत देख लें खुद जोड़कर तस्वीर के टुकड़े, हकीकत देख लें खुद जोड़कर तस्वीर के।
0: कहते हैं ना कि मेरे खतों को जो फेंका है फाड़ कर उसने, मेरे खतों को जो फेंका है फाड़ कर उसने, बिखर गई हैं हवा में नवाजशें क्या क्या। बहुत शुक्रिया आपका, अदा करते हैं, सलामत रहें, खुश रहें। और अब यूं है कि आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास इतना ही वक्त था। अपने सभी सुनने वालों से जो इस वक्त हमें ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के जरिए सुन रहे हैं, लिंक FM शेफील्ड से हमें सुन रहे हैं, या CV FM मिड्सब्रा से सुन रहे हैं, आप सभी सुनने वालों का हम दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ ही आज का रंगे महफिल पहुंचा अपने इख्तिताम पे। आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने हमें टिकटॉक पे ज्वाइन किया और जिन्होंने इस रेडियो पे हमें सुना, बहुत शुक्रिया। अब तो जाते हैं बुध का जैसे मीर, अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।

0: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
3: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
4: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राफर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंग स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 8EY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
12: 14:13 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.